वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम। भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए कर नौ निद्या बताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यान तर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया। हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दे कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म है तीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया। चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारे सिखे।

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जे वाहे गुरु, बोलो जे सिखा दा मन नीवा, मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे, सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारियां गुर धामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान, नेताणियां दे तान, नेउटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी, आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ, जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है, तिन्ना दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों करों, सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हाजूर। कड़ाहा प्रसाद दी दे गहादर है, दारे परवान होवे, परवान होया प्रसाद। संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चेते आवे। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवाना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।

0: रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामण बटाए कोई बकरा दिन खाया सकुआ खैपा होए पुराना सुटी है पिफर पाया को नानक तग ना टुटे जे तग हो वै जोर महला पहला
1: ना मने पा तू बजै सारा ही सच सूत दरगे अंदर पाई है तग ना तुर

0: ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
1: ਪੌੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਆਏਗਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰੋ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM band 100.8 MHz, FM band 100.9 MHz ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल

0: की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। द जीएसटी काउंसिल
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। आओ हुण गांधी चर्चा के तहत महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंग सुनते हैं।

एक बार दक्षिणी अफ्रीका दे टॉलस्टॉय फार्म विच गांधी जी ने अपने जर्मन मित्र कालेन बैक नू कहा कि सप्पां ते होर अजिहे जीवां नू मारना पाप है। कालेन बैक ते उना दे यूरोपियन साथी ए सुन के हक्के बक्के रह गए। कालेन बैक ने सोचिया कि जे सप्प ठुयां नू मारना गलत है ता फिर सानू उना नाल मित्रता करनी चाहिदी है। ए सोच के कालेन बैक ने सप्पां बारे किताबां इकट्ठियां कीतियां ते उना दा अध्ययन कीता। उना नू पता लगा कि सारे सप्प जहरीले नहीं हुंदे, सगों कुछ किसानां दे मित्र हुंदे ने ते उना दियां फसलां दी राखी करदे ने। कालेन बैक ने होर आश्रम वासियां नू दस्या कि किवें वक्-वक् किस्मां दे सप्पां दी पछाण कीती जा सकदी है। उसने आप एक वड्डा फनियर सप्प भी पालिया। इस सप्प नू वो अपने हत्थी खुआंदा सी। ए वेख के एक दिन बापू ने उसनू कहा, तुसी ए सब कुछ मित्र भाव नाल करदे हो, पर हो सकदा है कि सप्प नू तुहाडी मित्रता दी समझ ना आए, नाले तुहाडी दया विच डर दा अंश है। जे सप्प आजाद होवे तां साडे दोहां विचों कोई भी उस नाल खेडण दा हौसला नहीं करेगा। सानू

ईश्वर हर वेले हर इंसान दे नाल है, उदे अंदर है, बस साड़ी उनू लभन दी जड़ी पाल है। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

0: जय हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी बचालो, की हाल चाल है तेरा?
0: कृपा जी, उस दाते दी तुसी अपना सुना।
1: तगड़ा हाल चाल। देखो रंगा सिंह जी, जेड़ा आ समा है साडे कोले
0: जी,
1: पतझड़ दी जेड़ी फसल है आलूआं दी, ओदी काश्तकारी दा बड़ा टुकमा समा है
0: जी।
1: गल है कि कोई भी फसल जेड़ी है जो आपां बिना व्योंतबंदी तो बाजारे थले लेके आने तो बड़िया सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां कमियां पेश रह जांदियां ने।
0: बिल्कुल जी, उहदा फिर नुकसान चलने पैंदा,
1: नुकसान खेत दे विच दिखदा है। सो इस करके कोशिश ही करनी चाहीदी है कि जिहड़ी अगाऊं व्योंतबंदी है
0: जी,
1: उहदे च की फसल दीआं लोड़ां है, किहड़ा बीज लैणा है, किन्ना बीज लैणा है, कित्थों बीज लैणा है, इह सारीआं चीज़ां। क्योंकि बीज आलू, क्योंकि आलू इक ऐसी फसल है, जे नरुआ बीज पावांगे, सुधरिया चंगा बीज पावांगे ते फसल दा जम जिहड़ा चंगी रहूगा।
0: बिल्कुल जी,
1: है कि नहीं? अगर जिहो जिहा तेरा अन्न पानी हो जा, कम जाणी दा हिसाब हो जांदा। सो इस करके इह मुढ़लियां गल्लां दे विच रंगा सिंह जी, जदों आपां गल करदे हां कि किस्मां ने साडे कोले वख वख तरां दीआं किस्मां है
0: जी,
1: जिन्हां नूं आपां बाजारे थले लै के आ सकदे हां। अगेतियां दे विच कुफरी सूर्या है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोका किस्म है ते कुफरी पुखराज किस्म है
0: जी महाराज।
1: ते जिहड़ियां दरम्याने समें दीआं किस्मां है, उच कुफरी पुष्कर है, कुफरी ज्योति है, कुफरी बहार है। ते इसे तरह जे गल करिए पछेतियां दी, कुफरी संधूरी है, कुफरी बादशाह है
0: जी।
1: ते इह तों इलावा रंगा सिंह जी, आपां सारे जाणदे कि फसल दे विच प्रोसैसिंग दी बड़ी समर्था है।
0: बिल्कुल जी,
1: आलूआं दी फसल दे विच ते प्रोसैसिंग वालीआं किस्मां दे विच कुफरी चिपसोना है नंबर एक, कुफरी चिपसोना नंबर तीन है, कुफरी फ्राई सोना है अपने कोले।
0: बिल्कुल
1: किस्म। सो ये वक्ख वक्ख तरह दीआं किस्मां है जिन्हां नूं आपां ने बाजारे थले लैके आउणा है।
0: ठीक।
1: रंगा सिंह जी, आलू दा बीज किसे भरोसेयोग वसीले तों ही खरीदना चाहीदा, जिद्दां मैं पहलों जिक्र कीता, और हर तीन चार साल बाद नवां बीज लैके पुराने बीज नूं बदल देना चाहीदा।
0: बिल्कुल ठीक है जी,
1: क्योंकि लगातार

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दयानिधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: जाता। विदेश मंत्रालय एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् नागरिकोपयोगी आधारभूत संरचनां लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं सर्वथा अस्वीकृतं वर्तते। रियाद नगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन सऊदी अरब देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां कृते परामर्शः प्रसारितः। वर्तमान स्थितिं दृष्ट्वा भारतीय नागरिकाः सतर्काः भवेयुः, आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः। भारतीय नागरिकाः प्रवर्तमान घटनाभिः सम्बद्धानां दृश्य श्रव्य चित्राणां वार्तानां च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः। स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सूचितम्। प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायाम् 8002741234 इत्यत्र उपलब्धा अस्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांची नगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। त्याव चाप मारते हैं हुण तक दियां मुख खबरां वालों। वस्तु ते सेवा टैक्स जीएसटी कौंसल ने टैक्स अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म कर दिता है। कौंसल ने मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपए तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने सिक्ख्या सेहत संभाल ते सरकारी सेवावां तक पहुंच नूं आसान बनाया है। भारत ने पिछले साल 863 अरब डॉलर की बरामद दर्ज की है और इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का टीचा रखा है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप सिक्ख्या संस्थावां खोजकर्ताओं और विद्यार्थियों लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तक पहुंच यकीनी बनाने लई वचनबद्ध है। कैनेडियन लेखिका एमी कारसन नूं साहित्य लई इस साल का नोबल पुरस्कार दिता जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ विखे हुनर पंजाब अते फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल किते जारी। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पठानकोट दियां मंडियां दा दौरा किया है। क्या हुण तक किसानां नूं खरीद दे 1421 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पंजाब सरकार वालों अज सरकारी स्कूलों में करवाई जाएगी मेगा पीटीएम। 25 लाख मापे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना तहत हुण तक 3722 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्री महिलावां दे बैंक खात्यां विच ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नगर निगम चंडीगढ़ के एक सैनिटरी इंस्पैक्टर 14 लाख रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। ये सन हुण तक के मुख्य समाचार। तुसीं जुड़े हुए हो आकाशवाणी के जलंधर केंद्र के नाल और 7:02 हो गए हैं तो हुण समा हो गया है तुहाडे सब दे मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहणी सवेर दा। आओ फिर वरिंदर होणा कोलों ये प्रोग्राम सुनते हैं।

थ्री इडियट्स फिल्म का यह गीत तुसीं सुन रहे सी आकाशवाणी जलंधर दे सोहणी स्वर प्रोग्राम च। ते साडे देश विच जो विकास का गीत गूंज रहा है ना जी, इहदे लई असीं जाणदे हां कि साडे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दा बहुत वड्डा हत्थ है जी। पिछले 25 सालां तों ओह देश दे लई पूरे समर्पण दे नाल काम कर रहे ने, और असीं देखते हां कि जो योजनावां जो नीतियां देश दे विकास दे लई घड़ियां गईआं उहनां दे सार्थक नतीजे साडे सामणे आ रहे ने। माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने जन धन योजना दे नाल हर किसे दा बैंक खाता खोलिया, जिस करके जो भी सरकारी सहूलतां ने उह सीधा गरीब दे खाते तक पहुंचदियां ने, कोई विचोलगी नहीं हुंदी। और इहदे कारण, इस योजना दे कारण सारे देशवासियां दे खाते खुले, ते जो आपां कहिंदे हुंदे आ कि विकास दा जिहड़ा चानण है उह मुल्क दे अखीरले नागरिक तक भी पहुंचना चाहीदा, उह इस योजना ने सार्थक करके विखाया। तो जिस तरह माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तनदेही दे नाल देश दे विकास लई देश दी तरक्की दे लई काम कर रहे ने, असीं सारे रल मिल के इसे जज्बे इसे जनून दे नाल काम करदे आं, देश नूं विकास दीआं लीआं ते तोरीए ते विकसित भारत दा सुपना जल्द तो जल्द पूरा करिए। इस सुनेहे दे नाल अज दा सोहणी स्वर प्रोग्राम खत्म करन दी अपने दोस्त वीरेंद्र नूं दे दिओ इजाजत। नमस्कार।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਔਰ 8:30 ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद के अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार GST को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
4: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ।

0: है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धुलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष में बताते हैं,
1: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: ये दोनों केंद्र योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँव में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा

0: क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीडीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है,

0: memory, collectively hailing him as an irreplaceable icon who challenged the hero stereotype with unmatched raw intensity. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय दे शिखर सम्मेलन दे समाप्ति समागम च शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर के इलाज लिए दवाइयों की सप्लाई ते विक्री ते मुनाफे की सीमा 30% तक तय कर दी है। इस नाल दवाइयों की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी ते पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटा ते असम की 1 लोकसभा सीट लिए जिमनी चोणों लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उगे अदाकार नाना पाटेकर का अंतम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे च पूरे सरकारी सम्मान नाल कर दिता गया। ते क्रिकेट विच भारत ते वेस्ट इंडीज विचकार 5 ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज शामी रांची विच खेडिया जाएगा। हुण खबरों विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय वालों कराए जा रहे 2 रोज़ा सम्मेलन के समाप्ति समागम च शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सारे राज्यों के सियासी आगू ते महिला ते बाल विकास खेत्र नाल जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण अनुसार आयोजित किए जा रहे खेतरी सम्मेलन की लड़ी में दूजा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहयोगी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय तरजीहां प्रति समूहक जिम्मेवारी की भावना बढ़ाना, केंद्र ते राज्य विचकार बेहतर तालमेल राही टीचों की प्राप्ति में तेजी लियाना है। इस सम्मेलन 4 मुख्य विषयों पोषण, मुढ़ली सिक्ख्या, बाल सुरक्षा ते औरतों की सुरक्षा ते शक्तिकरण ते केंद्रित है। इस पहलकदमी तहत केंद्र ते राज सरकारां दे वख-वख हिस्सेदार खेतरी तरजीहां ते विचार वटांदरा करन लई इको मंच ते इकट्ठे हो रहे ने। इस विच बेहतरीन अभ्यासां नूं सांझा करन, स्कीमां नूं लागू करन विच आउण वालियां चुनौतियां दे हल अते चंगे शासन ते सेवा प्रदान करन दी प्रक्रिया नूं बेहतर बनाउण लई समाबद्ध कार्रवाई ते सहमति बनाउण ते वी जोर दित्ता जा रिहा है। सरकार ने कैंसर के इलाज लिए दवाइयों की सप्लाई ते विक्री ते मुनाफे की सीमा वध तो वध प्रचून मुल MRP दे 30% तक सीमित कर दिती है। रसायण ते खाद मंत्रालय नूं उम्मीद है कि इस कदम नाल दवाइयों दी कीमतों च 70% तक की कमी आएगी, जिस नाल कैंसर के मरीजों की सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। जिथे कैंसर के इलाज लिए सूचीबद्ध जरूरी दवाइया पहला ही सरकार वालों निर्धारित कीमत दी सख्त हद अधीन ने, उत्थे ही यह नवा फैसला मुनाफे की हद नूं सीमित करके गैर सूचीबद्ध कैंसर दवाइया लिए भी कीमत सुरक्षा का दायरा वधाएगा। सेहत सेवाओं बारे डायरेक्टोरेट जनरल अधीन कामकारी माहर कमेटी वालों दवाइया की सूची में अंतिम रूप दिए जाने तो बाद राष्ट्रीय दवा कीमत अथॉरिटी एक अधिकारित नोटिफिकेशन जारी करेगी। भारत में कैंसर के मामले वध रहे हैं। आबादी के हर लख लोगों में लगभग 60 लोग इस तो प्रभावित हो रहे हैं। कैंसर का इलाज मरीजों और उनके परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पाता है, जिन्हें अक्सर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। वस्तु ते सेवा टैक्स GST कौंसल ने टैक्स अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म कर दिता है। कौंसल ने मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दिती है। कल नवी दिल्ली में GST कौंसल की मीटिंग तो बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कौंसल ने गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म करने और GST अधीन मुकदमा चलाने की सीमा वधाने की सिफारिश की है।
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन

0: की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: जुर्माने के कैद बारे फैसला समर्थ अदालत के विवेक से छोड़ दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरां विच कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग नोटिसां ते कार्रवाइयां लई सांझे मापदंडां दी सिफारिश की है। हुण 10,000 की मुद्रा सीमा तो घट लई नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कौंसल वालों मंजूर किए गए जीएसटी सुधारों के नवे गेट का स्वागत किया है। सोशल मीडिया से एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी की व्यवस्था को हटाना, अपराधों को गैर अपराधिक श्रेणी में पाना, प्रक्रिया को सरल बनाने बारे कौंसल की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने दसिया कि इसके मुख्य उद्देश्य तेजी नाल फैसले लेना, पालना नाल जुड़े खर्चों को घटाना, आटोमेटिड रिफंड ते भरोसे ते अधारित प्रशासन ने। उन्होंने अगे कहा कि यह सुधार जीएसटी में वधेरे कुशल पारदर्शी ते नागरिक पक्षी बनाने लई सरकार दे लगातार यत्न अनुसार ने। यह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल दी 5 विधानसभा सीटां ते असाम दी 1 लोकसभा सीट लई होईयां जिमनी चोणां दीआं वोटां दी गिणती अज हो रही है। इन्हां विच पश्चिम बंगाल दीआं नंदीग्राम ते रेजीनगर विधानसभा सीटां, तमिलनाडु दीआं मदुरंथकम ते धारापुरम ते पुडुचेरी दी थत्थन चावड़ी सीट दे नाल नाल असाम दी नागाम लोकसभा सीट शामिल है। इन्हां सीटां लई वोटां मंगलवार पईआं सन। उर्दू अदाकार नाना पाटेकर का अंतम संस्कार कल रात महाराष्ट्र के पुणे स्थित उन्होंने फार्म हाउस नानाजी वाड़ी विखे पूरे सरकारी सम्मान कर दिया गया है। उन्होंने पुत्र मल्हार पाटेकर ने परिवारक मैंबर, रिश्तेदार, दोस्तों और प्रशंसकों की मौजूदगी रात करीब 11:30 बजे अंतम रस्मां निभाईयां। अंतम संस्कार तो पहले मरहूम अदाकार को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुणे हवाई अड्डे से नाना पाटेकर के मृतक के पहुंचने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्रा पवार ने उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। अंतम संस्कार दौरान फिल्म जगत दी कई शख्सियतां भी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के देहांत से दुख प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के सैशन लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। योग उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फैलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या पीएचडी प्रोग्रामा लिए वैबसाइट unicnet.nta.nic.in राही ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं। अर्जी देने की आखिरी तरीक 28 अक्टूबर है। यह प्रीख्या 14 दिसंबर तो 19 दिसंबर विचकार कराई जाएगी। हूती बागी ने दावा किया कि उन्होंने कल सऊदी अरब से नवे मिसाइल हमले किए ने। इन हमलों के निशानों में रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमीस मुशियात स्थित एक एयरबेस शामिल सन। रिपोर्ट अनुसार हूती बागियों ने मुलाजमान सऊदी अरब दी तेल सहूलतों और हवाई अड्डे तो दूर रहने की चेतावनी दी है क्योंकि उन्होंने इन्होंने थावों संभावित निशाना दसिया है। इसके जवाब में सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठजोड़ ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक के तबाह कर दिया है। इन हमलों कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा समेत कई एयरलाइंस ने रियाद लिए अपनी उड़ानों अस्थायी तौर पर रोक दिया है। भारतीय रियाद में चबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पिछले कुछ दिनों दौरान हुए हमलों की सख्त निंदा की है। इन हमलों में कई आम नागरिक मारे गए और कई होर जख्मी हो गए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आम नागरिकों से संबंधित सहूलतों को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकारयोग नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत उन परिवारों से डूंघी हमदर्दी प्रकट करता है जिन्होंने इन हमलों में अपने अजीजों को गुआ दिया है। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज विचकार 5 मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय लड़ी का दूजा मैच अज रांची में खेडा जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शामी 7 बजे शुरू होगा। पहला मैच जीतने तो बाद भारत लड़ी में 1-0 नाल अगे है। फुटबाल में मोहन बगान सुपर जायंट ने कोलकाता में खेडे गए फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल को 1-0 नाल हरा के IFA शील्ड का खिताब

जी प्रोग्राम भी शुरुआत हो गई है और पहला जिहड़ा गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं उन्होंने आ गया फिल्म दिल विल प्यार व्यार तो जिहदे विच जस्सी गिल ने इस गीत नूं गाया है, जतिंदर शाह ने इहदा संगीत दिता और लिखिया गुरपिंदर गिल होरां ने। तो आओ फिर सुनिए जस्सी गिल दा गाया यह गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय दे शिखर सम्मेलन दे समाप्ति समागम विच शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दे इलाज लई दवाइयां दी सप्लाई अते विक्री ते मुनाफे दी सीमा 30% तक कर दिती है। इस नाल दवाइयां दीआं कीमतां विच 70% तक कमी आउण दी संभावना है। वस्तु अते सेवा टैक्स GST कौंसल ने टैक्स अधिकारियों दा गिरफ्तारी दा अधिकार खत्म कर दिता है। कौंसल ने मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपए तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दिती है। तमिलनाडु पौंडेचेरी अते पश्चिम बंगाल दीआं 5 विधानसभा सीटा अते असाम दी 1 लोकसभा सीट लई जमीनी चोणां दीआं वोटां दी गिनती जारी है। उगे अदाकार नाना पाटेकर दा अंतिम संस्कार महाराष्ट्र दे पुणे च पूरे सरकारी सम्मानां नाल कीता गया। पंजाब सरकार वल्लों अज सरकारी स्कूलां विच मेगा PTM करवाई जा रही है। 25 लाख मापे होणगे शामिल। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने पठानकोट दीआं मंडियां दा दौरा कीता। क्या हुण तक किसानां नूं खरीद दे 1421 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। गैंगस्टरां ते वॉर मुहिम तहत पंजाब पुलिस ने कल गैंगस्टरां दे पछाणे 557 टिकाणियां ते छापेमारी की। कुल गिरफ्तारियां दी गिनती 77,071 हुई। अते क्रिकेट विच भारत अते वैसट इंडीज़ विचकार 5 20-20 मैचां दी लड़ी दा दूजा मैच अज शामी 7 बजे रांची विच खेडिया जाएगा। इह सन हुण तक दे मुख समाचार। मेरे मेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 MHz, FM बैंड 100.9 MHz अते आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दी DTH दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे सारे प्रोग्राम हुण वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकदे हो। ते हुण समा हो गया साडा प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल, ते आओ फिर शुरू कर दें प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल।

से लटके घुस गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हसेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला कान में झुमका चाल में चुमका कमर पे चोटी लटके घुस गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हसेरा

कल उन्हां दा जन्मदिन आने वाला है ते आज दा ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये रेखा जी उत्ते डेडिकेटेड है। इसे करके इस गीत नूं अज प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच चलाया ते आओ फिर इस गीत नूं पूरा सुनदे हां और होर गल्लां करदे हां रेखा जी बारे उन्हां दी जिंदगी बारे। सब तो पहले ये गीत जिहड़ा उन्हां दा सब तो हिट गीत रहा जिहदे तो उन्हां नूं पहचान मिली

पछताने, ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

खरे खरे जाती है क्यों परे परे तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बचा दूं मैं आज अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए तुझको दिखा दूं मैं चीज पे चीज जला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले

0: चाची चक्के पुशेरा
1: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला
0: हाय हाय

आंसर हो जान सजानी एक्टिंग वन, लेकिन वो चाहते सन कि एयर होस्टेस बनन, लेकिन समय ने ऐदा की करवट लई कि छोटी उम्र च ही उन्होंने पढ़ाई छड़ के 12 साल की उम्र च तेलुगू फिल्म रमला रत्नम जो 1966 के आई थी एक बाल कलाकार के रूप च काम किया। और फिर उस तो बाद 1970 के नेड़े तेड़े वो हिंदी फिल्मों में आ गए, पर जो हिंदी फिल्मों आए सन वो उदों उन्नी ग्लैमरस नहीं सी, और इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों के उन्होंने रंग का उन्होंने वजन का बहुत मजाक भी उड़ाया गया। और जिहड़ा गीत तुहानू असी हुणे सुनाया ना, इस गीत की खास गल ये कि सावन भादो का यह गीत जो शूट किया गया तो उदों उन्होंने हिंदी नहीं आनी सी, बिना हिंदी जाने उन्होंने सिर्फ संवाद रट के ये बोले सन, और फिर उन्होंने ये गीत पर एक्टिंग की सी। है ना अपने आप के एक दिलचस्प गल, और एक दिलचस्प गल यह भी है कि 1970 जो देखा रेखा जी ने कि अगर इस इंडस्ट्री के उन्होंने पैर जमाने हैं तो उन्होंने अपना सारा का सारा जो रूप है वह बदल लिया। उन्होंने अपना मेकअप, स्किन केयर और डांस से बहुत काम किया, योग किया, सख्त डाइट की, तो वो फिर फिल्म घर 1978 और फिल्म खूबसूरत 1980 में जी आई सी एक नवे रूप से एक ग्लैमरस आईकॉन के आ गए। तो जो उन्होंने ग्लैमरस आईकॉन ने हिंदी सिनेमा के उत्ते दस्तक दिता ना, तो सारिया के मूँह के वाह वाह निकली, क्योंकि अदाकारी तो उन्होंने बचपन च ही मिली सी, और बाकी उन्होंने अपने आप को बदलिया, और बदल के जो सारिया के सामने आए तो वह एक अलग ही रूप से। तो फिर उन्होंने एक होर गीत सुनते हैं, और उस गीत बारे भी बहुत सारी स्टोरीज है, वह भी तुम्हें दसागा। तो उन्होंने उस अलग रूप का ही वह गीत सेगा जो उस इंडस्ट्री के आए ने। फिल्म नटवर लाल चो लिया गया यह गीत है।

0: आदि वन विद्यालय की ले लो चोली बेकाले ससन
1: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह देने आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

कार्यक्रम चल रहा है जी, गाता रहे मेरा दिल, और गल कर रहे हैं रेखा जी होरां दी। तो रेखा जी दी जिहड़ी जिंदगी है ना, वो हमेशा सुर्खियां दे विच रही है, चाहे उन्हां दी निजी जिंदगी होवे चाहे पर्दे दी जिंदगी होवे। और पर्दे ते जदों उन्हां दी जुड़ी द ग्रेट सुपरस्टार द स्टार ऑफ मिलेनियम यानी कि अमिताभ बच्चन होरां नाल बनी ना, तो यह गल घर घर पहुंची। इस जोड़ी नूं इन्ना सराहाया गया कि लोगों ने अपने मन दे विच ये सोच लिया कि ये जिहड़ी जोड़ी है ये जोड़ी असल जिंदगी दी जोड़ी है। लेकिन असल जिंदगी दे विच मुकेश अग्रवाल होरां दे नाल रेखा जी का विआह होया, लेकिन विआह तो कुछ देर बाद उन्हां दे पति जी का जिहड़ा दुखद निधन हो गया। एक बार फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ा प्राइवेट कर लिया, लेकिन पर्दे के उत्ते जिहड़ी उन्होंने जोड़ी अमिताभ बच्चन होरां नाल बनी ना, उन्होंने हमेशा ही सलाम किया गया। अज भी लोग उन्होंने याद करते हैं। और जे गल सलाम भी करिए तां

मुकद्दर का सिकंदर दा ये जरा गीत है, ये वाकई सलामी देने वाला गीत है, क्योंकि ये जो उन्होंने डांस किया तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डांसर दे गाना उन्होंने तैयार किया। और इस गाने मजरे का एक रूप पेश किया, और उस तो बाद अमूमन हर फिल्म दे उत्ते इदा दे गीत फिल्माए गए। तो आओ फिर लता मंगेशकर ते किशोर कुमार का गाया, अमिताभ और रेखा ते फिल्माया मुकद्दर का सिकंदर का, यह गीत सुनते हैं।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: असी गल कर रहे हैं रेखा जी होरां दी, और रेखा जी की जिंदगी दे विच सब तो खूबसूरत पल, सब तो सुनहरी पल आया साल 1981 दे विच, जदों निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान रिलीज हुई। लखनऊ की एक मशहूर शायरा ते बनी है फिल्म उमराव जान, और इस किरदार नू रेखा ने जीवंत कर दिता। दिन रात इहदे ते मेहनत कीती और इस किरदार लई उन्होंने खास तौर ते उर्दू सीखी, कथक दियां बरीकियां सीखियां, और उन्हां दी संजीदा अदाकारी, अखां दे इशारे और नज़ाकत दा ऐसा जादू चलिया कि उन्हां नू 29वें फिल्म पुरस्कार यानी कि नैशनल फिल्म अवार्ड दे विच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस एक्ट्रेस दा जिहड़ा अवार्ड है उहदे नाल नवाजा गया। और इस फिल्म दे सारे गीत बहुत हिट रहे। एक खास गीत जिहड़ा ए दसदा है कि वह सिर्फ अदाकारी दे नाल ही नहीं अखां दे नाल भी गल करदे सन। आशा भोसले तक आया फिल्म उमराव जान तो लिया गया एक गीत।

0: जी श्रोतियों, ये सन सदाबहार रेखा जी। सारे आकाशवाणी परिवार वालों उन्होंने उन्होंने आन वाले जन्मदिन दियाँ ढेर सारिया मुबारकबाद। और इस ही गीत अज का गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम हूँ इतें ही खत्म करते हैं। मिनीमेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। और हुण समा हो गया है प्रोग्राम सुर साधना का, शास्त्रीय संगीत का एक प्रोग्राम जिदे विच अज पंडित राधे गोविंद दास का तुसी द्रुपद गायन सुनोगे। राग होएगा असावरी और उस तो बाद राग भैरवी। पखावत ते संगत कीती है हरीश चंद्रपति होरा ने, दलरुबा ते ने सुशमीत कौर और तंबूरे ते संगत दिती है सुमित होरा ने। ते आओ फिर सुनदे हां प्रोग्राम सुर साधना इस छोटे जे संदेश तो बाद।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: पेश है प्रोग्राम सुर साधना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज्ज शामीं नमीं दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय सिखर सम्मेलन दे समाप्ति समागम विच शामिल होणगे। सरकार ने कैंसर दे इलाज लई दवाइयां दी सप्लाई

0: को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: सभी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो द सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: प्रोग्राम चल रहा है जी हेलो फरमाइश और इस तो अगला प्रोग्राम जड़ा होएगा होएगा तमक जलंधर पैंदी और जिन्होंने भी तमक जलंधर पैंदी दे विच व्हाट्सएप राही अपनी फरमाइशा सुननी है ना वो 10:30 बजे तक सानू मैसेज कर सकते हैं साढ़े नंबर 9496536077 और जिन्होंने इस प्रोग्राम दे विच साढ़े नाल राबता कायम करना 0181 2342 173 इस नंबर पर कॉल मिलाओ और जुड़ जाओ और अगो पता की आवाज आएगी। नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
2: हेलो वीर जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
2: वीर जी सुखबीर सिंह छाजरी बोल रहे सुखरूर को।
1: सुखबीर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हेलो फरमाइश दे विच।
2: शुक्रिया वीर जी देखो कम्मा कारा च बिजी होण दे रहना बावजूद भी असीं तुहाडे वास्ते टाइम कढ़दे हां जी।
1: देखो जी जिहड़ियां चीजां दिल दे नेड़े हुंदियां ना ओहदे वास्ते टाइम कढ़ना ही पैंदा। जलंधर सब दे दिल दे अंदर
2: बहुत वधिया अनाउंसर ने गणेशा मैडम जी हो गए जी होर सारी अनाउंसर बहुत वधिया आवाजां ने सारे
1: बिलकुल बिलकुल तुहाडा सारिआं दा प्यार और सारे अपना काम बखूबी कर रहे ने तो फिर अज किहड़ा गीत सुनना तुसीं?
2: बिलकुल
1: जी बिलकुल जिंदगी लो पसंदीदा गीत सुनान जा रहे सानू कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है
1: जी आशकी मूवी जी 1990 च आई सी और नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है लिखा है समीर ने और आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ते कुमार सानू ने ते आओ सुनते हैं ये हिट गीत।

0: ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज वन जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुन शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश 0181-3242-173 इस नंबर ते कॉल करो, जुड़ जाओ साढ़े नाल जिस तरह की कॉलर दोस्त जुड़े ने। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: सोनलाल
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: तो सोनलाल जी, ये दसो कि अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो? नाना पाटेकर जेडे काली इस फानी जहान अलविदा कह गए ने, उन्हां दे जी जी बिल्कुल उन्हां नूं ये श्रद्धांजलि है। और असी भी तुहाडे सारिआं दे नाल एक बहुत उमदे कलाकार जी, ते आओ फिर उन्हां दी ही एक फिल्म आई सी 1996 खामोशी, ते जतन ललित ने इहदे गीत नूं संगीत दित्ता सी, ते मजरू सुल्तानपुरी ने इहदे बोल लिखे सन। वह गीत तुहानूं सुणाने आ, उहदे विच इहनां दी अदाकारी बहुत वधिया सी, एक मूक दे रूप दे विच उह बणे सन, और लेकिन अदाकारी अज तक याद कीती जांदी है। इह साडे वल्लों श्रद्धांजलि है, तुसीं कॉल कीती है, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद।
1: बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया,
0: शुक्रिया जी।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी थोड़ा सारिया का अपना हैलो फरमाइश और आखिरी दे कुछ पल रह गए ने घड़ी के मुताबिक सिर्फ 11 मिनट ते 11 सेकंड बचे ने साढ़े अगले कॉलर दोस्त आ गए ने नमस्कार जी कौन बोल रहे ने
1: सत श्री अकाल जी
0: कौन बोल रहे ने अजैब सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच तो फिर आज गीत केड़ा सुनना चाहते हो
1: जी
0: बिलकुल इशारा किया ना बिलकुल समझ दे आ गया तुसी ता मेरा काम भी पूरा कर दिता तुसी गीतकार का नाम भी दस दिता संगीतकार का भी दस दिता जी बिलकुल यही इस प्रोग्राम का खास मकसद है कि ना सिर्फ तुसी गीत सुनो बल्कि वो गीत दे बारे पूरी जांच पड़ताल भी करो और वो बारे पता भी होना चाहिए
1: पूरी जानकारी देंगे जी यही की गल नहीं है
0: बिल्कुल जी बिल्कुल चलो थोड़ा मनपसंदीदा गीत सुनान जा रहे हैं तुसी साडे नाल जुड़े और ये जानकारी भी सांझी की है बहुत बहुत धन्यवाद
1: सत श्री अकाल

0: में खुशियों की बारात को बोली चलके दुल्हन
1: जी महेंद्र कपूर दे गाए इसे गीत नाल हेलो फरमाइश प्रोग्राम हुने थे ही खत्म हुंदा है। अपने दोस्त गौरव नु प्रोग्राम नु खत्म करन दी दियो इजाजत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ही जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक सवेरे 11 बज रहे ने। आउन असीं तुहानू लै चलदे हां साडे दिल्ली केंद्र जिथों तुसीं सुनोगे समाचार हिंदी दे विच। कुछ पल दा इंतजार ते फिर होणगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की डेजीनगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और धारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के

0: दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनडेम से 4,000 से अधिक मतों से आगे चल रही है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माही, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेरे वेब 377.6 MHz से 73 KHz से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

कितना तो काजिया खुशियां भाई निकाल घरे भरे कितना तो काजिया खुशियां भाई निकाल घरे

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगुन को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय

0: शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवे के पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EGAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रे कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेब 347.6 MHz ते 73 KHz ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: घट समय विच वधेरे लाभ असि क्लिक ते कमाल है
2: फसिया
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है
4: जानकार बनो सुचेत रहो।
5: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने दी जिहड़ी खरीद है ओ 1 अक्तूबर

0: हाँ, मैनूं लगता है कि अजे ही सपने साहित पिच्चों ही लैके उदाहरणां गल्लां लैके बच्चों के सामने भावें सोशल मीडिया राही आया जाए, बच्चों नूं जागरूक किया जाए ता जो बच्चे साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वह कुराहे ना पवे, वह सीधे राह चले ते
1: जी
0: अपने देश की अपने पंजाब की अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकन, सीधे राह चल के कुरीतियां तो दूर हो सकन कि समाज नूं सही सेध दे सकन, क्योंकि साडे नौजवान साडा भविख है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरिंदर कौर नरूला जी, तुहाडे नाल गलबात करके असीं तुहाडे जो जीवन दे तजर्बिया दी सांझ पाई ते तुहाडे कोल किन्ना कुछ सिखिया, ते सानूं उम्मीद है कि साडे सुनण वालिआं ने भी बहुत कुछ सिखिया होएगा। तुसीं इसे तरह अपने कामयाबी दे रस्तिआं ते चलदे रहो ते नौजवान पीढ़ी नूं पाठकां नूं सेध दिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो च आउण दे लई, प्रोग्राम च गलबात।
0: सारिआं दा तहे दिल तों बहुत बहुत शुक्रिया।
2: वाकई सिमरन जी मज़ा आ गया इन्हां नाल जिहड़ी गल्लबात पूनम होरां ने कीती सीगी।
3: जी जी
2: डॉक्टर सुरिंदर कौर ने बड़े ही जिहनूं कहिंदे ना सिंपल अल्फाज़ां दे विच समझा दित्ता कि जिंदगी अज दे विच जियो, ना पिछला सोचो ते ना अगे बारे सोचो, जो अज है उहनूं जियो
3: जियो। और जदों असीं अज नूं जीउने आ ते सही तरीके नाल जीउने आ ते साडा जिहड़ा भविख आ उह आपे सुखाला हो जांदा।
2: बिल्कुल, ते इदां करदे आं क्योंकि डॉक्टर सुरिंदर कौर जी भी इस वेले अपना प्रोग्राम सुन रहे सीगे, तो एक गीत उन्हां लई ते साडे सुनन वाले स्रोतियां लई।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੇਰੇ ਵੇਬ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया

0: कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरे वेब 377.6 मीटर या 873 किलो हर्ट्स, TRM 854 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स, अते DTH थी आकाशवाणी पंजाब सेवा था। ए जलंधर केंद्र है। लो हुण तुहानूं दस दईए साडे इस मीटर तो अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दा वेरवा।

हुण तो थोड़ी देर बाद दोपहर 1:15 तो लैके 2:15 बजे तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम दे दौरान खबरां आपो अपने समय ते नशर कीतियां जाणगियां। दोपहर 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी स्वर्णी अमला ते साथियां दे गाए लोक गीत सुनोगे। चार बज के 2 मिनट ते स्वर्ण नूरा दे गाए सुफियाना कलाम समात फरमाओगी। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30 बजे। साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे ते हाथी प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच काम दियां गल्लां दे नाल बाहरी परजीवियां नाल पशुआं च होण वाले नुकसान इस विषय दे उत्ते डॉक्टर हरकीरत सिंह जानकारी देणगे। तुहाडी पसंद दे गीतां दा फरमाइशी सिलसिला सब दी पसंद वी पेश कीता जाएगा।

0: शाम 7:10 ते तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा। 7:45 ते सबरंग प्रोग्राम तहत अज तुसी मेरा नया अफसाना सुनोगे। अफसाना निकार होंगे डॉक्टर सालिक जमील बराड़। अठ बजे कुछ हिंदी फिल्मी गीत सुनाए जाएंगे। 8:10 ते जन सेवा तो देश सेवा लड़ी तक तारा 370 बारे जानकारी दिती जाएगी। रात 9:15 तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे स्पॉटलाइट। 9:30 हिंदी नाटक प्रसारित किया जाएगा फिर एक बार। 10:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा तो बाद दोपहर 3:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। 11:10 ते समा रहेगा लाइव फोन इन प्रोग्राम सौगाता। इसी साड़ी अज रात तक दे बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उना दे प्रसारण समय दा वेरवा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: मेरा वेब 347.6 MHz KHz ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। साडी स्टूडियो की कड़ी मुताबक इस वेले दोपहर के ठीक 1:10 हो जाने हूँ। तुसी प्रादेशिक खबर सुनोगे।

जय हिंद भाजी वीरो, तुहाडे मनोरंजन दे लई हिंदी फिल्मां दे विचों गीत लैके हाजिर होए आ। ते प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच गाया, अभिनेत्री फिल्म दे विचों लिया। इस गीत नूं लिखिया आनंद बख्शी ने ते संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: अज फिर किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां दे विच कभी कभी फिल्म दे विच तुसी गीत सुन रहे सी। प्रोग्राम दे विच कुछ होर गीत तुहाडी सेवा दे विच हाजिर करांगे, पर वेला हो रहा एक अंतराल दा। इस अंतराल तो बाद कुछ होर गीत लैके हाजिर हुंदे आ।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: वही मोनू, तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮਜਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਰ ਟੀ ਵਰਮਨ ਦਾ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावडी असेंबली सीट का जिमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की एक सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की तरफ से मुजवजा मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर मुजाहिरे या दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत की दरखास्तों को कम से कम 10 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले CJP को इस जगह पर मुजाहिरा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो मजकूरा रहनुमा खतूत और अपनी तरफ से किए गए तहरीरी वादों पर अमल करने में नाकाम रही। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि इजाजत न देने का फैसला पार्टी की पिछली नाकामी के तनाजुर में किया गया है कि वो नई दिल्ली इलाके में पुलिस के रहनुमा खतूत और उसके अपने तहरीरी वादों, नीज मौजूदा नज्म व जब्त की सूरत हाल, अवामी हिफाजत और ट्रैफिक साबतों पर अमल न कर सकी।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, जिनकी रूह से अवामी हिफाजत और अमन कानून बरकरार रखने के लिए जरूरी बंदिशें लागू हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दिल्ली पुलिस कानून की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ

0: मौजू कार्रवाई करेगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो अपने पहले स्टेशन से रवाना होंगी और उन्हें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह और दोपहर 2 बजे के दरमियान पहुंचना है, उन्हें उनके पहले स्टेशनों पर ही मनसूख कर दिया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया कि यह फैसला इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में सड़कों पर शदीद इम्कानी ट्रैफिक हुजूम के तनाजुर में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वज़ीर आज़म ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तिमाही जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीज में तेजी लाने के लिए पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौजूद पर तवज्जो दी जा रही है, जिनमें तग़ज़िया, इब्तदाई तालीम, बच्चों की हिफाजत, खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शोभा जाती तरजीहात पर बातचीत करने, अच्छे तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करने, चैलेंजों से निपटने पर अमल दरामद और बेहतर हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने से मुतालिक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर कार्रवाई से इत्तेफाक करने के लिए मरकज और रियासती सरकारों के मुतालिका फरीकें यकजा होंगे। न्यूज डेस्क से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी हुकूमत ने बच्चियों को रहम मादर में ही कत्ल कर दिए जाने की रोकथाम, बच्चियों की हिफाजत और तालीम को यकीनी बनाने और लड़कियों के लिए बराबरी के मौकों को फरोग देने के मकसद से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की थी। पिछली दहाई में ये मुहिम एक अवामी तहरीक बन गई। इस मुहिम में लड़कियों के जिंदा रहने, उनकी हिफाजत, तालीम और मजमूई तरक्की पर तवज्जो दी गई है। इस मुहिम के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले, तालीम जारी रहने, महफूज सजगी और सफाई सुथराई को भी फरोग दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अपने 3 रोज़ा दौरे में वो सिंगापुर के रहनुमाओं, तिजारत और सरमायाकार बिरादरी के सीनियर अरकान और आलमी इदारों के सरमायाकारों के साथ बहुत सी आला सतह की सरगर्मियां अंजाम देंगी। अपने दौरे में मोहतरमा सीतारमन सिंगापुर के सदर तरमन शनमुगा रत्नम और वजीर आजम लॉरेंस फोंग से मुलाकात करेंगी। वो सिंगापुर के नायब वजीर आजम गान किम योंग और वजीर खारजा डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगी। मुज़ाकरात में भारत सिंगापुर जामे दिफाई शराकत दारी के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इलाकाई फौज के यौम तासीस के मौके पर इसके सभी अहदेदारों, रिटायर्ड अहलकारों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इलाकाई फौज नागरिक भी सैनिक भी की मिसाल पेश करती है, जो गैर मामूली अजाइम के साथ मुल्क की खिदमत के लिए मामूली शहरियों के अज़्म की अक्कास है। वज़ारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के लेबर महकमे का कुछ कंपनियों के लिए मुस्तकिल लेबर नोटिफिकेशन प्रोग्राम PERM से मुतालिक फैसला H-1B वीजा प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि परम दरखास्तों को मुअत्तल किया जाना बजाती खुद मौजूदा H-1B प्रोग्राम या H-1B वीजा के हामिल अफराद और उन पर मुनहसर अफराद की हैसियत के जवाज को मुतासर नहीं करता। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डाक के आलमी दिन के मौके पर सभी डाक सेवकों को मुबारकबाद दी है और मुल्क के तई उनके पुरअज़्म खिदमत के लिए तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंधिया ने यह बात दोहराई कि डाक सेवा ही जन सेवा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल मुवासलात के दौर में इंडिया पोस्ट भी डिजिटल तब्दीलियों को अपना रहा है। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के टेलीकॉम और डिजिटल शोबों में पिछली दहाई के दौरान काबिले जिक्र तब्दीली आई है और ये शोबे आलमी सतह पर नुमाया हुए हैं। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा 5वां मुल्क भी बन गया है जिसने अपने तौर पर 4G नेटवर्क तैयार किया है। पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने 8,482 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की है। ये सीट पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने खाली

0: की थी। अशोक आनंद को कुल 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीब तरीन हरीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनयगम को 4,876 वोट मिले। तमिलनाडु की असेंबली हलके मदुरांतकम और धरापुरम में होने वाले जिमनी चुनाव में हुक्मरान टीवी के सबकत बनाए हुए हैं। मदुरांतकम में वोटों की गिनती के छठे दौर में टीवी के उम्मीदवार मरगातम कुमार वेल 23,884 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं, जबकि डीएमके 15,724 वोटों के साथ दूसरे मकाम पर है। धरापुरम हलके में वोटों की गिनती के 11वें दौर में टीवी के उम्मीदवार 31,327 वोटों से आगे हैं, जबकि डीएमके के उम्मीदवार ने 25,841 वोट हासिल किए हैं। एआईएडीएमके के उम्मीदवार के भानुमति ने 21,363 वोट हासिल किए हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 टी20 बैनुल अख्वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावली असेंबली सीट पर जिमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की 1 सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਤੀਸਰੀ ਕਸਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਬੋਸਲੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਦਾ।

0: मैं टीका ला लिया हूं तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाना।
0: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनो तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है।
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनो तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है।
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: फाजवीरो आहुन प्रोग्राम दे विच वक्त फिल्म दे विच लिया गीत संध्या। इस गीत नूं आवाज़ां दित्तियां ने महेंद्र कपूर ते आशा भोसले ने। गीत दे बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने ते संगीत निर्देशन रवि दा।

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
2: खुद पे इतरा तो नहीं?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

0: ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਸੱਤੇ ਪੇ ਸੱਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीते। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव

0: प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को

0: निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र

0: कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़े विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: मीडिया वेब 347.6 मीटर नेट 73 किलोहर्ट्ज़, टीएनएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा एह जलंधर केंद्र है। हुण पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी स्वर्णी अमला ते साथियां दे गाए लोक गीत सुनोगे। सब तो पहला इना दा गाया लोक गीत सुनदे आं कमली यार दी।

स्वर्णी अमला ते साथियां दी आवाज़ दे विच तुसी लोक गीत कमली यार दी सुन रहे सी। आओ इन्हां दा ही गाया, आओ हुण जुगनी सुन दियां।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी रंगली धरती प्रोग्राम दे विच स्वर्णी अमला ते साथियां दियां गाए लोक गीत सुन रहे हो। ते आओ हुण अज दे इस प्रोग्राम दे विच आखिर दे विच सुनदे आं उहनां दी गाई लोक गाथा सोनी महवाल।

नवा शहर तो आई है चिट्ठी। सुनिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु ते प्रतिष्ठा संधु। अंबाला तो आई है साढ़े को चिट्ठी, रवि कुमार, रंजीत कौर, प्रियंका, जया प्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरन, गुरु कीरत ते गुरु शब्द। इन्ना सारे दी पसंद से सिगला गीत लगान लगे हैं। कंठ क्लेयर दी आवाज, आओ सुनते हैं गीत।

तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बाबा बुले शाह दी काफ़ी तुसी स्वर्ण नूरा दी आवाज़ दे विच सुन रहे सी। आओ हुण एक होर बाबा बुले शाह दी काफ़ी समात फरमाने आ, सानू लगदा है यार नालू प्यारा।

0: गुरबाणी विचार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार गुरबाणी विचार जिहड़ा आकाशवाणी जलंधर तो बहुत लंबा अरसा चलता रहा, जदों वसीले नहीं सी हुंदे, लोग तकालां नूं अपना रेडियो ऑन कर लैंदे सी, ते अद्धे घंटे दा इह गुरबाणी विचार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जाता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वह संस्था जिस संस्था ने प्रबंध गुरबाणी के प्रचार से प्रसार और कितने कोई कुदरती आफता आ जाए उत्थे बढ़ चढ़ के अपना योगदान पाउंदी आ, ते इहदे वसीले गुरु की गोलक ते कुछ जायदादां आ। 105 साल पुरानी संस्था, इहदे जिथे वख-वख गुरद्वारा साहिबाना का प्रबंध आ, उत्थे नाल दी नाल मैडिकल यूनीवर्सिटी, एक मैडिकल कॉलेज, मैडिकल यूनीवर्सिटी बल्ले विखे, जिथे अनकोलोजी का भी बहुत बड़ा जिहड़ा इलाज किया जाता। सो ये संस्था ने विद्या के खेत्र के भी लगभग 108 स्कूल कॉलेज जिहड़े आ वह साढ़े होंद के आए आ, जिन्हां दे विचों गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनीवर्सिटी, वो नाल दी नाल साढ़े कोल बहुत सारे ट्रस्ट भी चलते आ। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी वाहत जथेबंदी जिहड़ी हर एक पक्ष से, चाहे आर्थिक पक्ष के तौर के उत्ते वख-वख कई बार लोड़वंद होंदे उन्होंने सहायता भी दिती जाती है, तो एक नवा ही पलांग भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुट्टी आ कि निश्चय अकैडमी जिहड़ी IAS ते IPS बच्चों लई सैक्टर 27 दे विच कलगीधर निवास चलती आ, जिथे साढ़े हर साल 25 बच्चे आउंदे आ, सारा कुछ रहन सहन पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फ्री। इस तरह जहदर गुरचरण सिंह टौड़ा इंस्टीट्यूट के विच असी जुडिशल अकैडमी निश्चय अकैडमी के तौर पर डिवेलप की आ, जिथे भी 25 बच्चे हर साल वो हिस्सा लेंदे, बहुत सारे बच्चे साडे सिलेक्ट भी होए आ। असी हुण नवीं लहर शुरू की आ, हर एक हलका मैंबर दे एक गुरमत समागम ते नाल अमर संचार की लहर प्रचंड की जाऊगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। राग प्रभाती विच उचारित भगत कबीर जी का यह फरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1349 ते सुभायमान है ते सर्ब संजीवालता दे संदेश का ऐलान करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सर्ब सांझी बाणी है। कोई भी मनुख इस बाणी नूं जीवन विच अपना के भव सागर तो पार उतर सकता है। बाणी अनुसार सारी सृष्टि दे जीवां दा मां प्यो प्रभु आप ही है। सारे जीव उसकी संतान हन। उस सांझे बाप की कीर्ति करते हुए ही उस नाल इकमिक होया जा सकता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारे हुए शब्द विच उस पिता की महिमा वड्याई करते हुए उसकी कृपा वास्ते जाचना करते हुए बेनती कर

देने कि केवल एक प्रभु ही साडा पिता है, असी उससे एक पिता दी संतान हाँ, बच्चे हाँ, बारिक हाँ, ते प्रभु तू ही मेरा गुरु है। ए मेरे मित्र सुन, मैं अपनी जिंद तेरे तो वारदी हाँ, मैनू प्रभु मिलन दी जुगत वाला उपदेश दे के राह दसो ताकि मैं दर्शन कर सकां। सुन मित्र, मैं तेरे चरणा दी धूड तो बलिहारे हाँ, ये मन तैनू ही समर्पित है। मैं आप जी दे चरण मल मल के धोवां ते अपना ये मन तैनू सौंप देवां। मेरे मित्र सुन, मैं तेरी शरण विच आ गया हाँ, प्रभु नू मिलन वाला उपदेश दियो। हुण कोई माण नहीं, बस तेरी शरण पिया हाँ, तेरी ही रजा विच राजी हाँ। ए मेरे मित्र सुन, ए जिंद जान शरीर सब अर्पित करके ही दर्शन संभव हो सकते हैं। मैं भी इस राह ते तुर पिया हाँ, प्रभु ने कृपा कीती है, संतां दे उपदेश सदका मैनू प्रभु दा नाम मिठा लगता है, दास ते गुरु ने कृपा कीती है, हुण सबनी थाई जात कुल तो मुक्त ते सर्वश्रेष्ठ प्रभु दे दर्शन दीदार हो रहे हैं। सरवण करदे हां लता मंगेशकर ते आशा भोंसले होरां द्वारा गायन कीता होया ये शब्द। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई।

एक पिता एकसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। इस शब्द गायन की तासी लता मंगेशकर अते आशा भोंसले होरा ने। श्री गुरु अर्जन देव जी गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सरलेख वाली बाणी दी 19वीं अष्टपदी दे 8वें पदे विच एक प्रभु दी उस्तत करन दा उपदेश दिंदे हन कि उस एक प्रभु दा जाप अते सिफत सलाह करो, उसे नू चेते करो अते मन विच वसाओ, उस एक प्रभु दी महिमा उसदे अनंत गुणा दा गायन करके करो, मन अते तन करके उसे दा ही जाप करो। ओ एक ही सबना विच आपे ही वर्त रहा है, इस सृष्टि उसे दा ही पसारा है, विस्तार है, उस एक नू आराध्या ही सारे पाप मुक जांदे ने, मन ते तन उस प्रभु दे रंग विच रत्ते जांदे ने, जिसने गुरु दी कृपा सदका उस एक नू जान लिया है, उस एक बारे जिसनू वी

हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जिय के संग सहाई। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में TVK ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर TVK आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहूं तुहानू

सब रंग इस प्रोग्राम च अज एक अफसाना सुनोगे मेरा नया अफसाना। अफसाना निगार होंगे डॉक्टर सालिक जमील बराड़।

रात 8:10 ते स्टेट हुक प्रोग्राम सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा तक। इस प्रोग्राम नु साडे आकाशवाणी पटियाला बठिंडा ते लुधियाना केंद्र भी नालो नाल प्रसारित करेंगे।

रात 8 बज के पंजाबी गीत सुनोगे? रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 बजे एक नाटक सुनो, हिंदी नाटक सुनोगे एक फिर एक बार, लेखक सतीश टंडन। रात 10:02 ते फोन ते आधारित व्हाट्सएप ते आधारित ताड़ियाँ फरमाइशा पूरियाँ कीतियाँ जानगियाँ गीतां दियाँ प्रोग्राम होएगा थोड़ी फरमाइश रात 10:02 ते। समाचार ते मुख्य समाचार अपने निर्धारित समय ते वारो वार प्रसारित कीते जानगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लिए सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30

0: 8 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: जिस तरह तुहानूं पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 1 अक्तूबर तो शुरू हो चुकी है।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं धोखाधड़ी वाले बीमा दाव्यां नूं रोकण लई मोटर दुर्घटना दाव्यां नाल संबंधित चार डिजिटल प्लेटफॉर्मां नूं आपस च जोड़न दा निर्देश दित्ता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों सारे विभागां नूं एशियन हाकी चैंपियन ट्रॉफी लई विश्व पद्धरी प्रबंध यकीनी बनाउण दे निर्देश। श्री गौरव यादव ने अज पंजाब दे पुलिस महानिदेशक वजों अहुदा संभालिया। डीजीपी ने चेतावनी दित्ती, सारे गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके कानून दे कटहरे च लिआंदा जाएगा। टीबी मुक्त भारत मुहिम तहत जलंधर विखे टीबी नूं खत्म करने विच शलाघायोग काम लई 91 पंचायतों नूं सन्मानित किया गया। ते क्रिकेट विच भारत ते वैसट इंडीज़ दरमियान 5 2020 मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज शामी 7 बजे रांची च खेडिया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं धोखाधड़ी वाले बीमा दाव्यां नूं रोकण अते मुआवजे दे निपटारे नूं तेज़ करन लई चार हफ्तियां दे अंदर अंदर मोटर दुर्घटना दाव्यां नाल संबंधित चार डिजिटल प्लेटफॉर्मां नूं आपस च जोड़न दे निर्देश दित्ते ने। इन्हां प्लेटफॉर्मां विच EDAR वाहन सारथी अते बीमा सूचना ब्यूरो शामिल ने। इह हिट एंड रन मामलियां अते PM राहत योजना नूं वी कवर करनगे। अदालत ने सारे राज्यां नूं बिना देरी दे EDAR पोर्टल उत्ते संबंधित डेटा अपलोड करन दे निर्देश भी दित्ते ने। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला अते प्रसन्ना बी वराले दे बेंच ने कुछ बीमा कंपनियां दे मुखियां नूं पहलां दे अदालत दे निर्देशां दी पालना करन विच असफल रहन लई नोटिस भी जारी कीते ने। मामले दी अगली सुनवाई 27 नवंबर नूं होवेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज सारे विभागां नूं 27 अक्तूबर तों 5 नवंबर तक एशियन हाकी चैंपियंस ट्रॉफी लई विश्व पद्धरी प्रबंध यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते ने, जिस विच निर्विघन तालमेल, अंतरराष्ट्रीय म्यारी सहूलतां, शहर दे सुंदरीकरण ते मेहमान नवाजी ते ध्यान केंद्रित कीता जाएगा। उन्हां ने जनतक उत्साह पैदा करन लई राजव्यापी ट्रॉफी टूर ते विद्यार्थियों की वध तों वध भागीदारी का भी सद्दा दित्ता है। उन्हां कहा कि सूबे नूं अंतरराष्ट्रीय खेड समागमां की मेज़बानी विच नवे मापदंड स्थापित करने चाहीदे ने। अज चंडीगढ़ विखे समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने सारे विभागां नूं नेड़े तालमेल करन अते हिस्सा लैण वालियां टीमां, अधिकारियां, दर्शकां नूं विश्व पद्धरी सहूलतां प्रदान करन विच कोई कसर बाकी ना छड्डण दे निर्देश दित्ते। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत, चीन, मलेशिया, जापान, बंगलादेश अते दक्षिणी कोरिया समेत प्रमुख हाकी मुल्कां दी भागीदारी पंजाब नूं कौमांतरी खेड केंद्र च रखेगी अते अपनी मेहमान नवाजी, बुनियादी ढांचा, खेड उत्तमता अते जीवंत सभ्याचारक रिवायतां नूं दिखाउण दा मौका देवेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरनामेंट दा उद्घाटनी समारोह 27 अक्तूबर नूं जलंधर च होवेगा, जिस दे मैच 5 नवंबर तक होणगे। उन्हां नगर निगम जलंधर नूं इह यकीनी बनाउण लई कहा कि शहर अंतरराष्ट्रीय सैलानियां लई इक स्वच्छ, स्वागत योग ते आकर्षक दिख पेश करे। श्री गौरव यादव ने अज पंजाब दे पुलिस महानिदेशक वजों अहुदा संभाल लिया। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस सूबे च शांति ते सद्भावना बनाई रखण च वचनबद्ध है। नशीले पदार्थां दी तस्करी ते संगठित अपराध खिलाफ लड़ाई नूं तेज़ करन, बुनियादी पुलिसिंग नूं मजबूत करना ते पुलिस बल दा आधुनिकीकरण ते अपग्रेड करना पुलिस दीआं मुख तरजीहां ने। उन्हां कहा कि पंजाब पुलिस वल्लों शांति, सद्भावना ते इक सुरक्षित सूबे नूं उत्साहित करन लई नागरिकां दे सरगर्म समर्थन सहयोग की मांग की थी। डीजीपी ने चेतावनी दी कि सारे गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके कानून के कटहरे च लिआंदा जाएगा।
2: पंजाब दे विच एंटी नैशनल एलीमेंट्स नूं सिर नहीं चुकन दिता जाएगा। पंजाब दे विच गैंगस्टर्स अते एंटी सोशल एलीमेंट्स लई कोई थां नहीं है। ये गैंगस्टर्स जिथे भी लुकनगे, मैं वार्निंग दिंदा हां, उन्हां नूं पंजाब पुलिस अरेस्ट करके लॉ दे सामने पेश करूगी। गैंगस्टर्स उन्हां दे नेटवर्क दे खिलाफ ऑपरेशंस इंटेंसीफाई कीते जाणगे। हाल ही दे विच माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करके युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान नूं होर तेज करन दे डायरेक्शंस दित्ते हैगे। सो पंजाब पुलिस लोकां दे नाल मिल के असीं युद्ध नशियां विरुद्ध नूं इस दे मुकाम तक लैके जावांगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नूं खत्म करना, ड्रग नेटवर्क्स नूं डिसमेंटल करना अते पंजाब नूं सुरक्षित, शांतिपूर्ण अते नशा मुक्त बनाउण लई पंजाब पुलिस दा संकल्प अटल
1: है। डीजीपी ने दस्सिया कि उन्हां अज पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह नाल मुलाकात भी कीती अते उन्हां नूं सूबे दी अंदरूनी सुरक्षा स्थिति अते कानून व्यवस्था बारे जानकारी दित्ती है। उन्हां कहा कि मीटिंग

0: सूबे दे मुख सकत्तर भी मौजूद रहे। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @AREAERRNU जलंधर। साड़ा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साड़ा चैनल है @AREAER जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनतक सेवा च 25 साल पूरे कर ले ने। यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा दे मंत्र राही परिभाषित है ते कणथक वचनबद्धता है जो जारी है। सेवा ते सुशासन लई इस दृष्टिकोण तो सेध लैंदे होए सरकार 2047 तक एक विकसित भारत दे टीचे नूं प्राप्त करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इस समर्पण जीवन नूं बदल रहा है। अज साडे विशेष लड़ी च असीं तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हां कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं नीम कोटड यूरिया 2015 राही अमल च लिआंदा गया। होर वेरवे नाल इक रिपोर्ट।
1: किसानां नूं सस्ते भाव ते मिलण वाला यूरिया खेती दी बजाए उद्योगां विच वरत्या जा रहा सी। इस तरह सरकार वल्लों दित्ती जांदी सबसिडी दा फायदा किसानां दी बजाए दूजे लोक चुक रहे सन अते किसानां नूं खाद दी घाट दा सामना करना पैंदा सी। सितंबर 2015 विच सरकार ने भारत विच बनण वाले सारे यूरिया ते निम दी परत चढ़ाउणी लाजमी कर दित्ती। दिसंबर 2015 विच इह नियम दरामद कीते जाण वाले यूरिया ते वी लागू कर दित्ता गया। निम दी परत चढ़ाउण नाल यूरिया दी उद्योगां विच गलत वरतों कर मुश्किल हो गई। इस नाल एक होर फायदा भी होया, निम दी परत कारण नाइट्रोजन हौली हौली निकलन लगा ते बूटियां ने इस नूं वधेरे चंगी तरह सोखना शुरू कर दिता। इस दे नाल ही झोने दी पैदावार विच 5.79%, मक्की विच 7.14%, सोयाबीन विच 7.4%, अरहर विच 16.8% अते गन्ने दी पैदावार विच 17.5% दा वाधा दर्ज कीता गया। यूरिया दी गलत वरतों होनी बहुत घट हो गई अते करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अंदाजा लाया गया। इस तरह निम की एक परत ने दहाकियां तो चल रही गड़बड़ी नूं रोकण विच मदद कीती। जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
0: टीबी मुक्त भारत मुहिम तहत जलंधर के जिला पदरी समागम दौरान टीबी नूं खत्म करने लई उन्हां दे शलाघायोग कार्ज वास्ते कल 91 पंचायतों नूं सन्मानित किया गया। डिप्टी कमिश्नर परजीत वालिया ने 91 टीबी मुक्त पंचायतों नूं सर्टिफिकेट दिते। इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश गर्ग अते जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर रितु दादरा भी मौजूद रहे। सन्मानित कीतियां गईयां 91 पंचायतों विचों एक पिंड गोल्ड श्रेणी च, 19 सिल्वर श्रेणी विच अते 71 कांसी श्रेणी विच ने। ब्लाक काला बकरा विच स्थित जाफल चिंगड़ पिंड नूं लगातार 3 टीबी मुक्त साल 2023-24-25 प्राप्त करने लई गोल्ड सर्टिफिकेट नाल नवासिया गया, जबकि 19 पिंडां नूं लगातार 2 टीबी मुक्त साल प्राप्त करने लई चांदी सर्टिफिकेट प्राप्त होए ने। 71 पिंडां नूं पहले साल टीबी मुक्त दर्जा प्राप्त करने लई कांसी सर्टिफिकेट प्राप्त होए ने। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO के खेतरी दफ्तर जलंधर के कमिश्नर पंकज कुमार ने भरोसा दवाया कि मैसर्स JCT लिमिटेड फगवाड़ा और मैसर्स JCT लिमिटेड फिलामेंट यूनिट हुशियारपुर के सबका कर्मचारियों EPF मैंबरों को प्रोविडेंट फंड की पूरी रकम जरूर अदा की जाएगी। अज जलंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करद श्री कुमार ने कहा कि सैकड़े सबका कर्मचारी PF मैंबरों वालों शिकायतें प्राप्त हो रही ने कि वह अपना PF की रकम मिलेगी या नहीं। उन्होंने भरोसा दवाया कि EPFO इसलिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
2: JCT फगवाड़ा तथा JCT होशियारपुर दोनों संस्थानों से कई ग्रेवेंसेज हमें रिसीव हो रहे हैं कि उन्हें PF की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब तक मिलेगी। इस संबंध में मैं रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पंकज कुमार सबसे पहले हमारे सारे PF मेंबर्स को ये अश्योर करता हूँ कि एक एक रुपया PF का उन्हें मिल जाएगा।
0: श्री कुमार ने कहा कि जेकर जरूरत पई तो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। देश भर में अज तो 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक हफ्ता 2026 मनाया जा रहा है। इधर पंजाब सर्कल डाक विभाग वालों इस दौरान वख-वख गतिविधियां राही डाक वित्तीय ते नागरिक केंद्रित सेवावां प्रदान करने लई भारतीय डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका बारे जागरूकता पैदा की जाएगी। अज जलंधर समेत होरना कुछ थावां ते बाद दोपहर तेज मीह पिया जिस नाल मौसम सुहावना हो गया। इस वेले भी बदलवाई बनी हुई है। क्रिकेट विच भारत ते वैस्ट इंडीज दरम्यान 5 मैचां दी 2020 अंतरराष्ट्रीय लड़ी दा दूजा मैच अज रांची च खेडिया जाएगा। यह मैच हुण तों थोड़ी देर बाद शामी 7 बजे शुरू होगा। ते आखिर च खास खबरां एक बार फिर तों। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं धोखाधड़ी वाले बीमा दाव्यां नूं रोकण लई मोटर दुर्घटना दाव्यां नाल संबंधित 4 डिजिटल प्लेटफार्मां नूं आपस च जोड़न दा निर्देश दित्ता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों सारे विभागां नूं एशियन हाकी चैंपियंस ट्रॉफी लई विश्व पद्धरी प्रबंध यकीनी बनाउण दे निर्देश। श्री गौरव यादव ने अज पंजाब दे पुलिस महानिदेशक वजों अहुदा संभालिया। टीबी मुक्त भारत मुहिम तहत जलंधर विखे टीबी नूं खत्म करन च शलाघायोग कार्ज लई 91 पंचायत

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर

0: ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
1: ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
0: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है, बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
2: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 हम आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, सभी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके

0: खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से।
1: और स्पीड तो है,
0: अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारे जो अमृत भारत ट्रेनें चली, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज लाने के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
2: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आएं और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े ही बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
3: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
2: जी,
3: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है, और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है, और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड, तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है, और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे, और इसकी लागत थी 17,840 करोड़।

0: इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी भूल रहे थे। देखिये, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूँ पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेस वे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पुणे का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में उसमें सुधार नहीं हो, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेस वे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है। और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, स्केल स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो मिस्टर की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
2: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में केवल 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा है अदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि

0: जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहानसबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं। और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, ये सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है, इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्र जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में

0: तो कुछ समय पहले तक अगर 2014 से पहले की बात करें तो सरकारी लाल फिताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए, साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा, और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है। लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
0: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
1: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सेंक्शन कर दी, और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारे किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
0: जी।
1: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और एक धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से करके 170-75-74 से बढ़ करके 160-70 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
0: जी,
1: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
0: जी,
1: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
0: जी,
1: मतलब इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा। हमने लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
0: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं, और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है, जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो, या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
2: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है, और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर

0: सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है तो कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पिंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
2: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 कि कहीं से कहीं पहुंचना, तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं।
0: जी।
2: उसे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है।
0: जी।
2: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे।
0: जी।
2: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
0: जी,
2: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हम ये सब सारा का सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-3000 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका समुद्र का जो अंदर गया, उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे।
0: जी।
2: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, सारी की सारी फैसिलिटीज है
0: जी,
2: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं।
0: जी।
2: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशंस में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशंस वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का, भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन, आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पे।
0: जी।
2: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में, रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
0: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूहर को दूहर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति यह है कि सीमावर्ती

0: क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं, यानी उतर सके अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
2: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है कि ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमिकल लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
2: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
2: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
1: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा के इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। हुण तुसी साडे दिल्ली केंद्र राही सुन रहे सी विशेष प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा।
4: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसी तो भी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा ले सकदा है ते

और में से एक छोटा सा लफाफा निकाला और लफाफे की गांठ खोलते हुए गामे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें से गोले जितनी अफीम ले लो। फिड्डू छोटे कद और सांवले रंगत का अवारा गर्द नशेड़ी था। फिड्डू उस्ताद का असल नाम क्या था ये तो किसी को मालूम नहीं था और उस्ताद उसका तकिया कलाम था, इसी वजह से लोगों ने उसका नाम ही फिड्डू उस्ताद रख दिया था। वह शरीफ लोगों के लिए बेकार और बदमाश और नशेड़ी लोगों के लिए किसी रहमत से कम नहीं था। उसे शहर में होने वाले हर छोटे बड़े वाकयात की खबर रहती थी। आपको नशा चाहिए वो आपको मिनटों में दिलवा देता था। कुछ लोगों के मुताबिक वो पुलिस का मुखबर या टॉट है। गामे ने अफीम के बारे में सुन रखा था कि यह आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है वगैरह वगैरह, इसलिए उसने बगैर कोई सवाल किए फिड्डू उस्ताद के हाथ से लफाफा पकड़ा और उसमें से चुटकी भर अफीम निकाली और जीभ पर रख ली और पानी का गिलास हल्क में उंडेल लिया और लफाफा फिड्डू को वापस कर दिया। चंद ही घंटों में गामे की थकावट दूर होने लगी और वो एकदम चुस्त हो गया। बस फिर क्या था, गामा आहिस्ता आहिस्ता अफीम का आदि हो गया। पहले पहले वो फिड्डू उस्ताद से मुफ्त अफीम खाता रहा, लेकिन बाद में उसने खुद अफीम खरीदनी शुरू कर दी। वो सारा दिन नशे में धुत दुकान में पड़ा रहता। नौकर अच्छी चाय नहीं बनाते थे और ना ही वक्त पर दुकानों पर चाय सप्लाई होती थी। इस वजह से बहुत से दुकानदारों ने गामे के हाथ से चाय मंगवानी बंद कर दी थी। इसके अलावा गामे के अफीम खाने के मतलब बहुत से अफराद को इलम हो गया था, जिसकी वजह से शरीफ लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया था। चोरी छुपे बिकने वाला ये नशा बहुत महंगा होता है, इसकी कोई कीमत नहीं, बस आपकी तलब पूरी हो जाए यही बड़ी बात है। एक किलो की कीमत हजारों रुपए होती है। बस फिर क्या था, अफीम की लत ने गामे का दूध और चाय का कारोबार ठप कर दिया। दुकान की कमाई कम हो गई। वक्त पर नौकरों को नौकरी ना मिलने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गवालों को रुपए ना मिलने पर उन्होंने दूध डालना बंद कर दिया। नतीजे के तौर पर गामे के यहाँ सुबह शाम बिकने वाला दूध आना बंद हो गया। गामा दुकान के घाटे को पूरा करने के लिए बार बार बीबी का जेवर बेचता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा सोना चांदी बिक गया। दुकान को चलाने के लिए उसने दोस्तों रिश्तेदारों ने उसकी कई बार मदद की, लेकिन वो दोबारा कामयाब ना हो सका। कई बार उसको नशा छोड़ सेंटर भी भेजा गया और जमात के साथ भी, लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद वो अपने मामूल की ज़िंदगी पर वापस आ जाता था। आखिरकार दोस्तों, मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रज़िया ने बच्चों का पेट भरने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। कभी कभार रज़िया जब कुछ ज़्यादा रुपए कमा लेती तो कुछ रुपए गामे को भी दे देती, ताकि वो नशा करने के लिए नशा ना बेचे, चोरी ना करे और पुलिस के बेरहम मार से बचा रहे। वो रज़िया के हाथ से नोट पकड़ते हुए रोने लग जाता कि काश वो बुरी सोहबत से दूर रहता तो आज उसकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। काश वो अपने बुज़ुर्गों की बात मानता। वो अपने मन्नतों और दुआओं के सदके पैदा हुए बेटे को दूध के लिए तरसता हुआ देखता तो बिलबिला उठता। फिर वो कई दिन तक नशे से दूर रहता और मजदूरी करके अपने बेटे की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन नशा उसका पीछा ना छोड़ता। अलगर्ज के वो चाह कर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा था। नतीजे के तौर पर चंद ही सालों में गामे की 20 साल की खून पसीने की कमाई और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो मुकम्मल तौर पर नशेड़ी बन चुका था। उसकी 18 घंटे चलने वाली दुकान बंद हो गई थी। उसने अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया था। अब वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए नशा बेचता था। कई बार पकड़ा गया था और जेल की हवा खा चुका था। उस पर कई मुकदमे चल रहे थे। नशे की तलब को पूरा करने के लिए उसने चोरियां भी करनी शुरू कर दी थी। वो शहर में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मारा मारा फिरता था। कई बार तो वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए सर पर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और गत्ते के डब्बे इकट्ठे करता हुआ नजर आता। गर्ज के वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए हर काम कर गुजरता था। पूरे इलाके के लोगों के लिए वो इबरत बन चुका था। कोई उसे हकारत की नज़र से देखता तो कोई उसकी ज़िंदगी पर अफसोस करता। वो एक सर्द रात थी। नशे की तलब ने गामे को बेहाल कर दिया था, लेकिन नशे के लिए उसके पास एक फूडी कोड़ी तक ना थी। आखिरकार वो निडाल होकर चारपाई पर ढेर हो गया और छत को घूरने लगा। उसे हर हाल में नशा चाहिए था। उसका अंग अंग टूट रहा था। उसकी जबान सूखने लगी थी। खून की गर्दिश तेज हो गई थी। दिमाग फटा जा रहा था। अचानक गामे के

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ ਨਾਈਟ ਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी।

समाचार विस्तार से। देश में तीन राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलग वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्रीगढ़गम टीवीके ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: There are three parties that have got licenses.
3: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
5: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
6: सेमीकंडक्टर जर्नी,
7: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
6: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
8: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मक

0: आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navneetham Navi Pillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar and Murshidabad district where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasirath

0: खुश आमदीद शकीला बानो, खुश आमदीद।
1: जय हिंद बंधु।
0: जय हिंद, जय हिंद।
1: सोमनाथ भाई, बूढ़े हो गए हो।
0: पोते पोतियां वाला हूँ, बूढ़ा तो होगा ही ना। ये ना मिलवाता हूँ तुम्हें, ये मेरा छोटा बेटा है भारतेंदु।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, जीते रहो।
0: और ये छोटी बहू है आस्था।
3: पाइलागू आंटी।
1: जीती रहो बेटी। बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर अपनी आजादी की लड़ाई पर गर्व तो होता होगा, है ना?
0: ये शुभेंदु है भारतेंदु का बेटा।
4: नमस्ते नानी।
1: नमस्ते बेटा।
0: और ये सुलेखा है सतीश की बेटी।
1: सतीश की बेटी। नमस्ते बेटा। आओ आओ बच्चो, अल्लाह तुम्हें भारत का सच्चा नागरिक बनाए। भाई सोमनाथ, बस दोनों की सवालाख संतान।
0: भारतेंदु की एक छोटी बेटी है रंजू, और सतीश का एक छोटा बेटा है संजू।
1: वो नटखट कहाँ है, जरूर नानी माँ से छेड़छाड़ की योजना बना रहे होंगे।
0: अभी तो ना वो स्कूल वालों के साथ भारत दर्शन पर गया है।
1: अच्छा,
0: आएंगे तो सचमुच ही तुम्हारी नाक में दम कर देंगे।
1: आने दीजिए, नाक में दम करने के लिए मैं भी किसी से कम नहीं। भारत दर्शन पर ऐसे सवाल पूछूंगी कि सचमुच नाक में दम आ जाएगा।
0: शकीला बानू, ये ना आपका कमरा है। यहाँ अपनी समझ के मुताबिक आपकी जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी गई है। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो संकोच नहीं करना।
1: लेकिन सोमनाथ भाई,
0: हाँ हाँ,
1: ये खिड़की बंद क्यों रखी है, देखो तो सही। समझी, चारों ओर फैले प्रदूषण के कारण।
2: प्रदूषण कहाँ नहीं है, राजनीति में प्रदूषण है, प्रशासन में प्रदूषण है, व्यापार में प्रदूषण है, रिश्तों में प्रदूषण है, कहाँ नहीं है, धर्म में प्रदूषण है। यू जस्ट नेम एनी फील्ड एंड यू विल फाइंड पॉल्यूशन।
1: अरे वाह भारतेंदु, तुम्हें तो दूर दूर तक प्रदूषण दिखाई देता है, लेकिन अपना यानी अपने आसपास का प्रदूषण क्यों नहीं दिखाई देता? होता है, कईयों की नजदीक की नजर काफी कमजोर होती है।
0: छोड़ो शकीला जी, बच्चे हैं यूं ही भुनभुनाते रहते हैं।
5: नानी माँ, मैं आपको नानी माँ तो कह सकती हूँ ना?
1: क्यों नहीं,
5: अगर आप पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चली जाती तो कम से कम अपनों के बीच में तो रहती।
3: अरे अब भी तो नानी अपनों के बीच में ही है, हम क्या इनके अपने नहीं
5: है? वो तो है, पर पाकिस्तान ना जाने की कोई वजह तो रही होगी।
1: वजह थी बेटी, वजह थी मेरा विश्वास, मेरी भावनाएं जो भारत की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी। भारत को आजादी तो मिल गई, पर वो लहू लुहान आजादी थी। स्वार्थी लोगों ने मजहब और धर्म के नाम पर ऐसी आग लगाई कि इंसानियत थू थू करके जलने लगी। दोस्ती, मोहब्बत, मासूमियत तलवारों की नोक पर उछाले जाने लगे। हथियारों की हुंकार में वंदे मातरम का स्वर टूट गया।
6: सकीना बेगम, हम ज्यादा देर तक यहाँ महफूज नहीं रह सकते। कल पठान फौजियों की निगरानी में 2-3 ट्रक लाहौर जा रहे हैं, हमें उनके साथ निकल जाना चाहिए।
7: लेकिन शकीला को कैसे समझाएं?
1: अबू, क्या हमारा जाना रुक नहीं सकता? क्या कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती कि हम यहाँ अपनी धरती पर बने रहे?
6: बेटी,

0: हालात तुम्हारे सामने हैं। जिस नफरत की बुनियाद पर वतन की तकसीम हुई है, वो नफरत कैसे मिटेगी?
1: मिट जाएगी अबू, ये खून खराबा वक्ती है, कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वही पहले जैसा माहौल, पहले जैसा भाईचारा। भारत सरकार ने सेक्युलरिज्म का ऐलान जो किया है ना।
0: ये तुम्हारी खुशफहमी है बेटे, कौन जाने आगे क्या होने वाला है। लोगों के काफिले जा रहे हैं, आ रहे हैं। तकसीम ने दिलों पर जो जख्म लगाए हैं, वो कैसे भरेंगे? अगर हमारे जैसे कुछ लोग यहाँ रह भी जाएंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी?
1: वही जो एक हिंदुस्तानी की होगी अबू, वहाँ जाकर हमारी क्या हैसियत होगी? एक रिफ्यूजी की, एक मुहाजर की, घर से भेगर होने की अजियत हम कैसे बर्दाश्त करेंगे अबू?
0: बेटे वो हमारा मुल्क होगा, वहाँ हमारे कुछ हकूक होंगे, हमारे कुछ अधिकार होंगे, हमारे कई रिश्तेदार होंगे। तुम्हारे भाई ने वहाँ एक मकान का इंतजाम भी कर लिया है। अपनों के बीच में हमें जो सुकून मिलता है बेटे, वो शायद हमें यहाँ ना मिले। हिंदुस्तान के साथ मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ बेटे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो बेटे, चलने की तैयारी कर।
2: शकीला कहाँ गई थी तू? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे, और ये किसे पकड़ के ले आई हो?
1: ये पंडित मूलराज की बेटी आशी है, इसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया है, इसका मकान जला दिया गया है, और ये दीवार के साथ सहमी सी खड़ी थी।
2: देख लिया ना मौत का नंगा नाच तूने? तुम्हें भी कोई चीड़ फाड़ कर कौओं या गिद्धों के आगे डाल देगा। निकाल इस छोकरी को यहाँ से, इसी की वजह से हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएंगे।
1: इस मासूम को चलती हुई आग में कैसे फेंक दूँ?
0: अच्छा अच्छा रहने दो, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं।
2: क्या कह रहे हो, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं?
0: अब इस यतीम को अकेला कहाँ छोड़ेंगे? जब तक छोटी रहेगी घर का कामकाज करेगी बेगम, और जब बड़ी होगी तो किसी माकूल जगह निकाह कर देंगे।
1: पाकिस्तान ले जाने के ख्याल से मेरी रूह कांप उठी, और मौका पाते ही मैं उस बच्ची को साथ लेकर निकल गई। शकीला से शीला बन गई। जलते मकानों और जलती लाशों से बचते बचाते मैं एक रिफ्यूजी कैंप में जा पहुंची। शकीला से शीला बनना मुझे कबूल नहीं था, मेरी आत्मा इसे कबूल नहीं कर रही थी। मैं जानती थी कि वो फिरका तराना बवंडर कुछ खुदगर्ज सियासी लोगों का उठाया हुआ था, जो वक्ती था, क्योंकि वो हिंदुस्तान की आत्मा के विरुद्ध था। परंतु मैं डरी हुई थी कहीं मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए मैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में फिर से शकीला बनकर रहने लगी।
3: और वो बच्ची?
1: वो आशी, उसकी अपनी घर गृहस्थी है, वो जर्नलिस्ट है, और उसका पति विक्रम सिंह कार्टूनिस्ट है।
3: आपकी बेटी आशी आपकी खबरें खूब लगाती होगी।
1: वो खबर लगाती नहीं, खबर लेती है, बड़ी तेज जर्नलिस्ट है।
4: वैसे भी अब इनकी खबरें क्या लगती होंगी, आजादी मिलने के बाद अब कुछ करने को तो रहा नहीं।
3: अरे वाह, रहा क्यों नहीं, सभाएं होती हैं, विकास कार्यों पर बातें होती हैं, प्रॉमिस और संकल्प होते हैं, समारोह और उत्सव होते हैं, उद्घाटन होते हैं। हमारे बाऊजी को इनवाइट किया जाता है कि नहीं?
5: जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बलिदान और त्याग किया हो, अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खाई हों, वे हमेशा खबरों में रहते हैं।
4: आपका युग था बड़ा कमाल का नानी अम्मा, काश हम भी आपके युग में पैदा हुए होते, आज़ादी की लड़ाई में जान देते तो शहीद कहलाते, जिंदा रहते तो फ्रीडम फाइटर बनकर आराम की जिंदगी गुजारते।
1: आजादी की लड़ाई खत्म तो नहीं हुई, ये तो अब भी जारी है, ये लड़ाई तो बार बार लड़नी होती है।
5: अब किससे देश को आजाद कराना है?
6: लो बड़ी भी, समझाइए बड़े भैया को, देश को भ्रष्टाचार से आजाद कराना है, सामाजिक अन्याय से आजाद कराना है, गरीबी से आजाद कराना है, फिरका प्रस्ती और अलगाववादी ताकतों से आजाद कराना है, यही तो कहते हैं हमारे नेता।
1: तुम्हारा

0: सर आंखों पर, लेकिन नेता ठीक कहते हैं।
1: वाह, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति कहता है देश को भ्रष्टाचार से बचाओ।
0: ठीक कहता है वो, आपको चुनौती देता है कि मैं भ्रष्ट हूँ, दोगला हूँ, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता हूँ, मुझे कुर्सी से उतार दो, ले आओ ऐसे व्यक्ति को जिसमें आत्मनिष्ठा हो, जो देश से सच्चा प्यार करता हो, जो देश को भ्रष्टाचार के दैत्य से आजाद करा सकता हो।
1: तो ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी?
0: जैसे महात्मा गांधी की पहचान हुई थी, लाल बाल पाल की पहचान हुई थी, अब्दुल कलाम आजाद की पहचान हुई थी, जय हिंद का नारा गुंजाने वाले नेताजी सुभाष की पहचान हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और तत् की पहचान हुई थी। कितनों के नाम गिनाऊं? आजादी की लड़ाई तो अब भी जारी है। बोलो शुभेंदु, इन महान नेताओं में कौन सा बनने की हिम्मत है तुम्हें?
2: बोलो भैया, अब बोलते क्यों नहीं?
3: पर एक बात है, भ्रष्टाचार के इस दैत्य की पहचान भी तो हो। आंटी, इसमें हंसने की क्या बात है भला?
0: अभी अभी भारतेंदु को दूर दूर तक प्रदूषण दिखाई दे रहा था, अब उसकी पत्नी को भ्रष्टाचार के दैत्य की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यानी भ्रष्टाचार दिखाई देता है और भ्रष्टाचारी की पहचान नहीं होती। वाह भाई वाह, सच्चाई से आंख मूंदने, समस्या से दूर भागने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? देखो, लेकिन पहचानने से साफ इनकार कर दो।
4: आपको तो आजादी की लड़ाई का एक्सपीरियंस है, आप हमारा नेतृत्व क्यों नहीं करती?
0: अपने बाबूजी से कभी ये सवाल किया है आपने?
5: शकीला जी, हम नेता नहीं थे ना, हम सब फॉलोअर थे।
4: भाई, हम भी फॉलोअर बनने को तैयार हैं, पर कोई नेता तो हो।
0: काका, नेता आसमान से नहीं उतरेगा, इंसान खुद अपना नेता होता है, उसी की आत्मा, उसी का जमीर उसका नेतृत्व करता है। कभी वैसा करने की कोशिश की जैसा आपकी आत्मा कहती है? हम भ्रष्टाचार की दुहाई भी देते हैं और भ्रष्टाचारी के तलवे भी चाटते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे उठाकर शासन की कुर्सी पर बिठा देते हैं। यही हम सबकी ट्रेजेडी है।
1: माँ, मैं आपको माँ कह सकता हूँ?
0: क्यों नहीं कह सकते, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। आओ भारतेंदु, बैठो।
1: अम्मा, कितना सूद काट लेती हो?
0: जितना कट जाए। कुछ कहना चाहते हो? तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो बेटा।
1: अम्मा, मेरे पास एक खबर है, बल्कि एक पूरी कहानी। आप आशी से कहकर अखबार में छपवा देंगी?
0: छपनी योग्य होगी तो जरूर छपेगी। हाँ, लेकिन खबर ऑथेंटिक होनी चाहिए। बहुत सी कहानियां मनगढ़ंत होती हैं, महज दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए।
1: जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, फैक्ट्स पर आधारित है।
0: कहो।
1: ये हमारे घर के बाहर जो जमीन का टुकड़ा है ना, जहां से गंदगी और कचरे की बू आती है, ये सरदार खड़क सिंह का है।
0: कौन खड़क सिंह? वो जो सोमनाथ के साथ क्रांति दल में थे?
1: हाँ हाँ हाँ, वही। स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने ये जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इसलिए दी थी कि यहाँ एक पार्क कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए पार्क हो, खेलने के लिए मैदान हो, फूलों के पार्क हो। आधी जमीन पर अलग अलग किस्म के पेड़ लगाकर उसे मिनी जंगल का रूप दिया जाए।
0: तो ये सब बना क्यों नहीं?
1: यही खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैंड ट्रांसफर का एग्रीमेंट 5 साल पहले हुआ था, तब खड़क सिंह अंकल ने यह जमीन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी थी। उसके बाद बड़ी तेजी से उस पर काम शुरू हुआ, उसका प्लान भी तैयार हो गया था।
0: फिर क्या हुआ? पार्क कॉम्प्लेक्स बनने का काम शुरू क्यों नहीं हुआ?
1: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर सक्सेना की अचानक मौत हो गई। राणा कुंवर सिंह नए चेयरमैन बन गए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की नई रचना हुई, नए मेंबर बने और पार्क कॉम्प्लेक्स बनने की योजना खटाई में पड़ गई। अब यहां कोठियां बने।

0: बनेंगी और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा।
1: ये कैसे हुआ? तुमने उनको बताया नहीं कि यहाँ पार्क कॉम्प्लेक्स बनना है?
0: बताया था। सर आपने मुझे बुलाया है?
2: आओ भारतेंदु साहब, इनसे मिलो। ये सरदूल सिंह है, हमारी खास आदमी।
0: मैं इनसे मिल चुका हूँ सर।
2: आपने इनके प्लान पर साइन करने से इनकार क्यों कर दिया?
0: इसे प्रोसीजर के मुताबिक पेश नहीं किया गया सर। इस प्लान के साथ इसकी फाइल होनी चाहिए।
2: फाइल?
0: जी हाँ सर, फाइल जिसमें जमीन का ट्रांसफर डीड है, ट्रस्ट का रेजोल्यूशन है, टेंडर का नोटिस हो, टेंडर आपको इसी आदमी के नाम से खुला है इसकी जानकारी हो।
2: देखा सर सिद्धू सिंह, इसे कहते हैं कॉन्शेशियस और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तुम्हें फाइल साथ लेकर जानी चाहिए थी। ये लो फाइल, मंत्री जी का फैसला है कि यहाँ विकास कार्य जल्दी शुरू किया जाए क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है।

0: रजुल सिंह, इसे कहते हैं कॉन्शेशियस और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तुम्हें फाइल साथ लेकर जानी चाहिए थी। ये लो फाइल, मंत्री जी का फैसला है कि यहाँ विकास कार्य जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, इसलिए हाथों हाथ फाइल को चलाया गया है। इनका ठेका देने का फैसला भी ऊपर से हुआ है। आप इस प्लान पर साइन कर दो।
1: पर ये वो ब्लूप्रिंट नहीं है सर। इस जमीन पर तो पार्क कॉम्प्लेक्स बनना था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ गया?
2: ये यहाँ पार्क के लिए साइट रखी हुई है, 200 स्क्वायर यार्ड का पार्क है।
1: एक पार्क नहीं सरदूल सिंह जी, पार्क कॉम्प्लेक्स बनना था, जिसमें झूले थे, फिसल पट्टियां थी, खेल का मैदान था, फुलवाड़ियां थी, फाउंटेन्स थे, पेड़ थे।
0: तुम्हारा दिमाग घास चरने तो नहीं गया? शहर में खेल के मैदानों का क्या काम?
1: सर सवाल शहर में खेल के मैदानों की इंपॉर्टेंस का नहीं, सवाल है बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास का, राष्ट्र के भविष्य का, एक स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का। ये जमीन सरदार खड़क सिंह ने दी थी।
0: जमीन किसी ने भी दी हो, इस वक्त ये जमीन हमारे पास है, हम जो चाहें इस पर बना सकते हैं, जैसा चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये फाइल, इसमें हर एक कागज लगा है, हर वो डॉक्यूमेंट लगा है जो इसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
1: नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये वो फाइल नहीं है। वो फाइल बिल्कुल कंप्लीट थी, उसमें पार्क कॉम्प्लेक्स का प्लान भी लगा हुआ था, जिस पर मेरे और चीफ इंजीनियर के साइन थे। वो फाइल कहाँ है सर? चेयरमैन साहब एक्सक्यूज मी, ये फ्रॉड है। I feel there is some shady deal in it. ये करोड़ों का घोटाला है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा।
0: अरे रुको भारतेंदु, ये है ओरिजिनल फाइल, इसे भी साथ ले जाओ, फ्रॉड को साबित करने के लिए कुछ सबूत तो चाहिए।
1: ये सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये फाइल जला रहे हैं सर आप? नहीं, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। छोड़िए, हटके पीछे, मैं कहता हूं पीछे हटिए, छोड़िए, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए फाइल।
2: क्या कर रहे हैं?
3: क्या हुआ? अरे ये हाथ कैसे जल गया?
1: सच्चाई को जलाने से बचाने की कोशिश की थी।
3: कौन सी सच्चाई? किस सच्चाई को बचाने के लिए आपको अपना हाथ जलाना पड़ गया?
1: उन्होंने उस फाइल को आग लगा दी है जिसमें पार्क कॉम्प्लेक्स के डॉक्यूमेंट्स थे।
3: अरे तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पार्क कॉम्प्लेक्स बने या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स?
1: क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का भविष्य सीमट में चिना जा रहा है और तुम कहती हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: एक पार्क कॉम्प्लेक्स के ना बनने से देश के भविष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों नहीं समझते?
1: कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें तुम्हें भ्रष्टाचार का खूंखार चेहरा दिखाई नहीं देता, बच्चों के अधिकारों का दमन दिखाई नहीं देता, पर्यावरण को दूषित करने की आवाजें सुनाई नहीं देती। भविष्य बिगड़ेगा नहीं तो क्या संवरेगा?
3: अरे देश के भविष्य की चिंता है, अपने वर्तमान की नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे हमारा वर्तमान मिट्टी में चिन देंगे ये लोग, क्यों भूलते हैं आप कि आज का सिस्टम क्या है
1: और हम क्या हैं? उस सिस्टम के लज्जाहीन भोक्ता, जिस आजादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया, हमारा काम सिर्फ उसे भोगना है, लूटना है, उसकी रक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
4: जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी में अपना बैरेज तो नहीं खो देना चाहिए तुम्हें। जोश में होश ना हो तो जोश हत्या का कारण बन जाता है, समझे तुम? भावनाओं के जोश में तुम इस कदर अपना बैरेज खो बैठे हो कि आप इसका रिकॉर्ड चला दिया।
1: बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने रिकॉर्ड चला दिया?
4: अंबुजी चेयरमैन ने फोन पर सब कुछ बता दिया है, जानते हो कि सरदूर का शुमार किन लोगों में है? उसके पास मनी पावर है, मसल पावर है, ऐसे शख्स के साथ उलझने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
1: बाबूजी मैं किसी के साथ नहीं उलझा, मैंने फाइल जलाई नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश की है।
5: तुम्हारे कहने से क्या होता है, वहां सारा दफ्तर तुम्हारे खिलाफ हुआ है, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं।
6: और सोमनाथ भाई ने गैर कानूनी जमीन बचाकर सच्चाई पर पानी फिर जाने दिया।
1: केवल जमीन ही नहीं बचाई बल्कि सारे केस को रफा दफा कराकर मेरी ट्रांसफर भी करा दी। अब सुना है वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

0: बनने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं।
1: सबूत के बगैर तुम्हारी खबर खबर नहीं बनेगी, शोशा बनकर रह जाएगी।
0: सबूत है तो सही, शायद काफी ना हो।
1: क्या सबूत है?
0: उस फाइल के कुछ अजले कागजात मेरे पास हैं। खड़क सिंह अंकल ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेटी सिमरन को दिया था। वो अमेरिका में सेटल है। अंकल ने अपनी जायदाद के बंटवारे के लिए वसीयत भी की थी। वो सिमरन के पास जरूर होगी। जिस फंक्शन में अंकल ने जमीन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ट्रांसफर की थी उसमें सिमरन भी शामिल थी। उसने उस पर वीडियो भी बनाई थी। शायद वो वीडियो अब भी उसके पास हो।
1: तुम्हें रिस्क का अंदाजा है?
0: तभी तो ये खबर आपको दी है।
1: यानी तुम रिस्क उठाने से डरते हो। मुझे इस उम्र में एक बार फिर लड़ने को कह रहे हो, और तुम में एक बार भी लड़ने की जरूरत नहीं।
0: आप न सही, लेकिन आशी तो प्रेस के माध्यम से ये लड़ाई लड़ सकती है।
1: इससे क्या होगा? कुछ दिन लोगों में चटखारेदार चर्चा होगी, फिर सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ खामोश हो जाएगा। धरना दोगे? हाँ धरना। तुम अपने और शुभेंदु के मित्रों से बात करो, मैं यहाँ के फ्रीडम फाइटर से मिलती हूँ। अगर ऐसा हो सके तो स्वतंत्रता दिवस पर फिर एक बार राष्ट्रीय चेतना को जगाया जा सकता है।
2: सुन लिया सोमनाथ, अपनी अंतरात्मा की जिस आवाज को तुम आज तक अनसुना करते आ रहे थे, उसे अपने बेटे भारतेंदु के मुंह से सुन लिया। बोलो कैसे करोगे अब शकीला का सामना? उसके चुभते धिक्कारते सवालों का क्या जवाब दोगे? अपने दोस्त खड़क सिंह की आत्मा को क्या जवाब दोगे?
3: बोलो, है कोई जवाब?
2: कौन हो तुम?
3: मुझे नहीं पहचान रहे हो? गौर से देखो, मैं तुम्हारा दोस्त खड़क सिंह हूँ।
2: खड़क सिंह,
3: याद कराने आया हूँ उन आदर्शों को जिन पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन आदर्शों को जीने का संकल्प किया था।
2: मुझे संकल्प याद है।
3: याद होता तो आज तुम इस तरह अपने आप से आंख ना चुराते होते, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हो गए होते। मेरे यार, तुम धरती के एक टुकड़े को भ्रष्टाचार से नहीं बचा सके, जिस धरती के साथ मेरे नव निर्माण के सपने जुड़े थे, उसे तुम्हारे सामने भ्रष्ट लोगों ने मिल बांट लिया है, और तुम देखते रह गए, यहां तक कि अपने बेटे की जबान तक को दबा दिया। अरे खुद कुछ नहीं कर सकते थे तो उसे ही अपने आदर्शों का संबल दे देते, उन्हें तो तुम पूजा की सामग्री बनाकर कैश करा रहे हो।
2: नहीं नहीं, मैंने उन मूल्यों को कैश नहीं किया।
3: करते रहो नहीं नहीं नहीं नहीं, देते रहो अपने आप को झूठी तसल्लियां। कुछ दिनों में भ्रष्टाचार की खूबसूरत इमारत उभरेगी, उसके भव्य उद्घाटन में जाकर उन आदर्शों और मूल्यों का गुणगान तुम्हें भी करने का मौका मिलेगा। उस मौके को हाथ से मत जाने देना, तुम्हारी शान भी दोबाला हो उठेगी।
2: नहीं, ये इमारत नहीं उभरेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा।
4: तुम इसे कैसे रोक सकते हो?
2: देखो सरदूल, मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मैं चेयरमैन साहब से बात करने आया हूँ, समझे?
5: ठीक है, आप मेरे साथ बात करें। कल तक तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कोई एतराज नहीं था, आज इस अचानक तब्दीली की वजह?
2: मेरा जमीर, मेरी आत्मा।
4: ओहो, अचानक तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया? कल तक तो ठीक ठाक थी, कहीं एक आध प्लाट के लिए तो राल नहीं टपने लगी?
2: सरदूल सिंह,
5: तुम खामोश रहो सरदूल। सोमनाथ जी, क्या कहती है आपकी आत्मा?
2: यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बस।
5: आपको मेरे काम में दखल देने का अधिकार किसने दिया है?
2: उन आदर्शों और मूल्यों ने जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी।
4: लो, आ गए आजादी के ठेकेदार। एक बार बाबा

0: जी को जोश चढ़ा है। बाबा जी, आजकल कोई आजादी की लड़ाई नहीं चल रही।
1: चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक इस धरती को राष्ट्र विरोधी ताकतों से आजाद नहीं करा लिया जाता। समझे सरदूल सिंह, आजादी की लड़ाई किताबों में छपने वाली कोई कहानी नहीं, बल्कि ये इतिहास की ठोस हकीकत है। हमारे देश प्रेम की अमर पहचान है, हमारे अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा है। समझे तुम, हम इसे कभी कलंकित नहीं होने देंगे, कभी नहीं। चेयरमैन साहब, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपने खड़क सिंह की धरती पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैं इसका विरोध करूंगा।
2: देखो सोमनाथ, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। वो जमीन खड़क सिंह की थी, लेकिन आज ये ट्रस्ट की है।
1: वो तुम्हारी निजी मलकीत भी नहीं है, वो राष्ट्र की धरोहर है। समझे आप, उसे खड़क सिंह ने ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र को सौंपा था और तुम इन जैसे लोगों के साथ मिलकर उसे बेच रहे हो। ये है आपका ट्रस्ट।
0: देखो बाबा, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। चेयरमैन साहब, आप क्यों इन लोगों को सिर पर चढ़ाते हो? आजादी की लड़ाई क्या लड़ी है, अपने को देश का मालिक समझने लगे हैं। जाओ बाबा, जो करना है करो, ढिंढोरा पीट कर देश प्रेम की दुहाई दो। देखता हूं तुम अकेले क्या कर सकते हो।
3: ये अकेले नहीं है, मैं भी इनके साथ हूँ।
4: आप कौन है?
3: मैं शकीला हूँ।
0: तुम भी कोई फ्रीडम फाइटर हो?
3: ठीक पहचाना आपने, सिर्फ मैं ही नहीं, सामने देखो, भारतेंदु, शुभेंदु, वो सैकड़ों नौजवान हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम धरना देंगे।
5: भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
6: भ्रष्टाचार
5: नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
6: भ्रष्टाचार
5: नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
6: सत्य की
5: जीत हो,
6: सत्य की
5: जीत हो,
6: सत्य की
5: जीत हो।
6: देश की धरती
5: देश के नाम,
6: देश की धरती
5: देश के नाम,
6: देश की धरती
5: देश के नाम।

जी प्रोग्राम शुरू हो चुके तो हांडी फरमाइश दी प्रोग्राम दी शुरुआत की मोहम्मद रफी दे गाए हुए इस गीत नाल ते साडे कोल फरमाइशां पहुंच चुकी ने सो तुहाडी फरमाइशां तुहाडे तक पहुंचाउण जा रही हैं जी। पहली फरमाइश सानू आई है जी मजनू का टिल्ला तो भेजण वाले ने फरमाइश कमल बलूचा

0: जी दोस्तों तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो चुक्या ते प्यारे प्यारे गीत वसे सुनाने शुरू कर चुक्या ते हुन व्हाट्सएप तो बाद वारी है जी फोन दे राही साडे तक जो फरमाइश पूरी आई है उन्नू पूरे करन दी। सो देखदे हां जी फोन ते सानू फरमाइश करन वाले पहले कॉलर कौन ने। हैलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन गल बात कर रहे हो?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड तो बोल रहा मैं
0: जी। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम जिते अपना हाल चाल दसो की हाल चाल है
1: जी।
0: जी प्रोग्राम रोज सुनते हो तुसी?
1: हां जी मैडम जी।
0: ते ठीक है, फिर आज दसो गाना केड़ा सुनोगे फरमाइश करके?
1: दो कड़ियां फिल्म दा जी, तुम्हारी नजर क्यों खता खता खता बख्शो दिलर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ली। अपना मनपसंद गीत सुनो अपने रेडियो सेट ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी।

जी तुहाड़ी फरमाइश प्रोग्राम दे विच हुण वारी है जी व्हाट्सएप दे जरिए जिहड़ी साडे कोल फरमाइश पूरी है करन दी वारी आई है जी। ये फरमाइश सानू आई जी पिंड माधोपुरी डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब चौंक बत्तियां वाला तो ते फरमाइश भेजण वाले ने बलविंदर बिल्ला माधोपुरी राज कौर ज्योति गोल्डी गुरफतेह सिंह राम लाल कुहारा बब्बू टिवाणा USA तो इन्हां ने फरमाइश की है जी। इन्हां नूं कोई भी गीत सुनाया जाए यानी कि कश्मीर की कली का गीत इन्होंने पहला क्या है जी लिखन लिखा होया कश्मीर की कली फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो अगली फरमाइश सानू भेजी है जी। इन्होंने भेजी है जी दुर्गई सेलू तो भेजन वाले ने फरमाइश चंदू कुलकर्णी हेमलता ते CR कुलकर्णी अगली फरमाइश सानू भेजी है जी। गंजुंडवारा तो भेजन वाले ने फरमाइश मुहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम हाशमी मुहम्मद तौसीफ हाशमी महमद तैमूर हाशमी मुहम्मद कलीम हाशमी अगली फरमाइश सानू भेजी है जी। शामली सलोनी तो संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो फरमाइश आई है। अगली फरमाइश है जी अस्तुपुरा जिला माऊ तो भेजन वाले ने फरमाइश मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर तो फरमाइश है जी आज़ाद अली अनवर रिजवाना परवीन ते अब्दुल्ला आज़ाद होरा वालों सेम फरमाइश कर रहे हैं जी। अगली फरमाइश है जी शमसुल राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजल खान अनु खान होर ने भेजी है फरमाइश गुंजुड़वाला तो। अगली फरमाइश जी आई जी सानू सैक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा तो आई है भेजन वाले ने फरमाइश विनय मोहन खान वन मीनाक्षी पोलवा पलोमा ते डॉक्टर ईशानी सो इन्होंने फरमाइश की है जी कश्मीर की कली फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं सो इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं तो आओ सुना इन्हों की पसंद का यह गीत। मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली चुनिया गया यह गीत।

जी व्हाट्सएप दे जरिए सानू फरमाइश भेजिए जी। बुलटाना इस्लामपुर महाराष्ट्र तो फरमाइश भेजिए सहदेव दमोदर, शशिकला दमोदर, सुमित कुमार दमोदर होर ने पारसमनी फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं। अगली फरमाइश भेजिए जी सानू जिला मुरादाबाद पिंड दाहलपुर उत्तर प्रदेश तो भेजन वाले ने फरमाइश मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक ते बलबीर सिंह होर ने। अगली फरमाइश सानू भेजिए करनी खेड़ा फाजिलका पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश कुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन राणू, प्रवीण, नवीन अनमोल, बूटा मनीता, नवनदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश सानू भेजिए जी पिंड जगोड़ी जिला यमुना नगर तो भेजन वाले ने फरमाइश रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत ते मनराज। सो इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ तुहानू सुनाने आ पारसमनी फिल्म च लिया गया एह गीत।

जी तुहाड़ी फरमाइश प्रोग्राम दे विच हुण असीं अगली फरमाइश पढ़ रहे हैं वट्सएप दे जरिए जो साडे कोल पहुंची है। ये फरमाइश सानू आई है जी MLB रोड ग्वालियर तो भेजण वाले ने सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव या आरव खुराना, SK पप्पी वालों। इन्होंने फरमाइश किया जी बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत सुनना चाहते ने। तो अगली फरमाइश सानू आई है जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा ते शाइना शर्मा। अगली फरमाइश जड़ी आई है जी पटेल नगर मलोट तो आई है तो भेजन वाले ने फरमाइश डॉक्टर रमेश कुमार जंजोरिया, गीता रानी जंजोरिया, गगनदीप जंजोरिया, आरजू जंजोरिया ते गुड्डू। अगली फरमाइश सानू आई है जी श्री सुधांकर राय जाधव, डॉक्टर प्रशांत राय जाधव वालों भेजन वाले ने भेजी है जी फरमाइश ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद तो। अगली फरमाइश सानू आई है जी आरे गांव तो कुमार संचित वयाल होर वालों, मोताला तो कुमार प्रथमेश देशमुख होर वालों, मोताला तो फरमाइश आई है कुमारी प्रणाली देशमुख वालों, कनाडा तो फरमाइश आई है जी कुमारी संदर्भ देशमुख वालों, तो करड़ा वालों करड़ा तो फरमाइश आई है कुमारी सानवी देशमुख होर वालों। अगली जी फरमाइश आई है जी सानू ये आई है जी तनौरी तेली वाला तो भेजन वाले ने फरमाइश निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू होर वालों। अगली जड़ी फरमाइश आई है जी जी पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो भेजन वाले ने फरमाइश हरजिंदर शिंदर, जसवीर जसी, सीता और गीता। ये पता नहीं जी फिल्म का नाम लिखा कि उन्होंने अपने नाम लिखे ने। सो इन्हों की फरमाइश पूरी कर दी है तो आओ थानू सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म चलिया गया ये गीत।

जी व्हाट्सएप के जरिए साढ़े को फरमाइश पहुँच चुकी है जी। ये फरमाइश सानू आई है जी कोट मोहल्ला चुगंटी बुलंदशहर तो भेजन वाली फरमाइश मुहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाह नवाज अब्बासी सरफाज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अबानसा अब्बासी ते पूरा अब्बासी परिवार फरमाइश कर रही है जी सानू लव इन टोक्यो फिल्म च लाए हुए गीत नू सुनना चाहते ने। तो अगली जोड़ी फरमाइश सानू आई है जी ये आई है जी खड़गे नगर यमतवाल महाराष्ट्र तो भेजन वाले ने फरमाई लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई लोखंडे शैलेश लोखंडे प्रतीक्षा लोखंडे स्वरपली प्रीत लोखंडे रक्षिता लोखंडे रियांश लोखंडे तो पूरा लोखंडे परिवार। अगली फरमाइश जी आई है जी सानू बारह राजस्थान तो आइए वार्ड नंबर बारह राजस्थान तो आइए भेजन वाले ने फरमाइश परमजीत कौर सोलंकी विष्णु देव सोलंकी राजवीर सोलंकी रमन राठौड़ तो इन्हों का पूरा परिवार फरमाइश कर रहा जी। अगली फरमाइश जी आई है जी सानू ये आई है जी इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा पुष्पिंदर कौर हुर वालों आई है जी बठिंडा तो फरमाइश। सो इन्हों की फरमाइश पूरी कर जा रही हैं तो सुनती हाँ लव इन टोक्यो फिल्म चु लिया गया है गीत

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:05 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार

0: को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के तीन डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam, TVK, won the by-elections in Madurantakam and Tharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabham won Tharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP-NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
2: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit facility will remain closed at 45 metro stations from 9 p.m. tonight till tomorrow until further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station.

0: बिल्कुल जी, मेरी मम्मी ने पसंद नहीं है। तुम गीता जी कर रहे सुनीता शर्मा होने की आवाज़ से भी प्रोग्राम चल रहे जी। सो गाते मैं थोड़े दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल पढ़िया होया तो दोस्तों दी कॉल्स भी जड़िया ने सानू आनी शुरू हो गई। सो सब तो पहले कॉलर तो देखते हैं कौन आए ने जी। हैलो
1: हैलो,
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात। हाँ जी राजू जी, की हाल चाल है जी थोड़े? चलो वधिया होने चाहिए है। तो की कर रहे थे इस वे?
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी, मैं फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।

0: चलो जिंदगी दे उतराव चढ़ाव
1: हाँ
0: आउंदे
1: उतार
0: रहिंदे
1: चढ़ाव
0: जी।
1: चलते रहने ने, पर ये अभी जिंदगी चलती रहनी चाहिए।
0: हाँ
1: सो
0: जिंदगी क्या
1: गीत केड़ा सुनाइए आज, केड़ा?
0: गीत बोल रहा सुना दो बोलिए तो बोलिए।
1: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत
1: थैंक यू जी,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू।
0: टाटा।

सुबह का जो मैं रोवा तेनू याद करके गीत है जगह सुतंत्र पुगा साहब की आवाज़ के पिछे अगली फरमाइश जी साढ़े तीन पहुँची है जी। ये फरमाइश पहुँची है लक्की जी हनुमानगढ़ राजस्थान तो इन्हों के नाल ने जी एकम त्रिशा अर्शिता ते अविश। सो सुरजीत मंदरखिया साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं अगले इस पैरे जे गीत नाल।

सुबह का दोस्तों तुम्हें इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम सुनाते अपने दोस्तों के नाल पर जो समा है और आता है एक वचन वाले पास बार बार मैंने इशारा कर रहे सो इस प्रोग्राम में मैंने इतने खत्म कर दी हुई इजाजत क्योंकि हम तो कुछ पलों के बाद रात एक जो वचन वाला है सो तुम कितने नहीं जाना क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होगा तब तक बने रहो आकाशवाणी पंजाब के नाम।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार गुरबाणी विचार जेड़ा आकाशवाणी जलंधर तो बहुत लंबा अरसा चलता रहा, जदों वसीले नहीं सी हुंदे, लोग तकालां नूं अपना रेडियो ऑन कर लेंदे सी, ते अद्धे घंटे का यह गुरबाणी विचार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जाता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था जिस संस्था ने प्रबंध गुरबाणी के प्रचार से प्रसार और कित को कुदरती आफता आ जाए उत्थे बढ़ चढ़ के अपना योगदान पाँदी आ, तो ये वसीले गुरु की गोलक तो कुछ जायदात आ। 105 साल पुरानी संस्था, ये जिथे वख वख गुरद्वारा साहबाना का प्रबंध आ, उत्थे नाल दी नाल मैडिकल यूनीवर्सिटी, एक मैडिकल कॉलेज, मैडिकल यूनीवर्सिटी बल्ले विखे, जिथे अनकोलोजी का भी बहुत बड़ा जिहड़ा इलाज किया जाता। सो ये संस्था ने विद्या के खेत्र दे विच भी लगभग 108 स्कूल कॉलेज जिहड़े आ वो साढ़े होंद दे विच आए आ, जिन्हां दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनीवर्सिटी, उहदे नाल दी नाल साढ़े कोल बहुत सारे ट्रस्ट भी चलते आ। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी बाहत जथेबंदी जिहड़ी हर एक पक्ष ते, चाहे आर्थिक पक्ष दे तौर दे उत्ते वख वख कई वारी लोड़वंद हुंदे उहनां नूं सहायता भी दित्ती जांदी आ। तो एक नवा ही पड़ांग भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुट्टी आ कि निश्चय अकैडमी जिहड़ी IAS ते IPS बच्चों लई सैक्टर 27 दे विच कलगीधर निवास चलती आ, जिथे साढ़े हर साल 25 बच्चे आउंदे आ, सारा कुछ रहन सहन पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फ्री। इस तरह जहाजा गुरचरण सिंह टौड़ा इंस्टीट्यूट दे विच असीं जुडिशल अकैडमी निश्चय अकैडमी के तौर पर डिवेलप की आ, जिथे भी 25 बच्चे हर साल उहदे विच हिस्सा लैंदे, बहुत सारे बच्चे साढ़े सिलैक्ट भी होए आ। असीं हुण नवीं लहर शुरू की आ, हर एक हलका मैंबर दे एक गुरमत समागम ते नाल अमर संचार की लहर प्रचंड की जाऊगी। बहुत बहुत

गुरमत विच गुरु दी बड़ी महिमा है। गुरु बिना मनुखा जीवन पटकना विच ही रहिंदा है। दरअसल गुरु ही जीवन विच पथ प्रदर्शक अर्थात राह दिसेरा है। उस तो बिना जीवन विच कोर अंधार ही रहिंदा है। भटकदे मन नूं टिका अते शांति पूरा गुरु ही बख्शदा है। इस भौतिक युग विच अशांति दा ही पसारा है। ऐसी स्थिति विच सच्चा गुरु

भक्त पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। इस शब्द गायन की तसी पाई बख्शीश सिंह अते उनादे रागी जत्थे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचली बाणी विच एक अकाल पुरख की आराधना का उपदेश है। बाणी विच अनेकां वडमुल्ले संदेश रब्बी सुनेहे मनुखता लई सुभाए मान ने। गुरु महिमा गुरमुखां दी महिमा वालियां रचनावां विच सुचज्जी जीवन जुगत दर्शाई गई है। श्री गुरु रामदास जी वडहंस की वार महला चौथा जिस दियां 21 पौड़ियां हन, पंजवीं पौड़ी विच गुरु महिमा बयान करदे होए फरमाउंदे ने, मैं उस गुरु तो वारने जाना हां जिस गुरु ने मैनू हरि प्रभु की बात कथा सुनाई है। मैं ऐसे गुरु तो सदा सदा बलिहारी हां जिस गुरु ने मेरे लिए हरी सेवा करन दा सबब बनाया है। हुण ऐसा सच्चा गुरु मेरे नाल है, मेरे अंग संग है, जो हर थां हर वेले मेरा राखा है। शाबाश है ऐसे गुरु नू जिसने मैनू हरी परमात्मा दी महिमा दी सोझी बख्शी है। दास ऐसे गुरु तो कुर्बान है जिसने हरि का नाम मैनू प्रदान करके मेरे मन दी आस पूरी कीती है, मेरिया इच्छावां दी पूर्ति कीती है। ऐसा प्यारा सतगुरु मेरे नाल है। सरवण करदियां वडहंस की वार विच्चों इस रचना दा गायन। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथै किथै मैनू ले छड़ाई। इस पावन रचना का गायन किया है भाई लखविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। इस पावन रचना का गायन किया भाई लखविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस रचना की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी शिवतार सिंह।
1: यह पावन शब्द जो आप जी ने सरवण किया है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 587 उपर श्री गुरु रामदास साहब जी द्वारा उच्चारण की हुई वडहंस की वार की पंजवीं पौड़ी है। श्री गुरु रामदास जी इस पौड़ी अंदर गुरु की उस्तत करदे होया फरमान करते हैं कि मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाता हाँ। जिस गुरु ने मेरे अंदर परमात्मा का नाम बख्श के मैनू विकारां तो बचा लिया है। श्री गुरु अर्जन देव जी भी सोरठ राग अंदर बख्शिश करते हैं कि मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाता हाँ, जिस की कृपा नाल परमात्मा सारे जीवां ते मेहर भरी नज़र रखता है। फरमान है, अपने गुरु उपर कुर्बान भए कृपाल पूर्ण प्रभ दाते जी होए मेहरवान। विचार गोचरे शब्द की पहली पंक्ति अंदर गुरु साहब फरमान करते हैं, तिस गुरु कौ हों वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, भाव मैं सदके हाँ अपने गुरु तो जिसने प्रभु की गल मैनू सुनाई है। श्री गुरु रामदास जी ने श्री राग अंदर एक होर शब्द राही बयान किया है कि हे भाई जनों, कोई परउपकारी है जो मैनू परमात्मा नाल मिला देवे। तां गुरु जी नाल ही उत्तर देंदे हन कि ऐसा परउपकारी केवल सतगुरु ही है जो नाम बख्श के परमात्मा नाल जोड़ सकता है। फरमान है, मेरे भाई जना, कोई मोकव हर प्रभ मेल मिलाए, हों सतगुर विट हवारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। श्री गुरु अर्जन देव जी एक होर शब्द राही ये बख्शिश करते हैं कि हे भाई, सच्चे सतगुरु की सेवा ही सफल है, क्योंकि गुरु की कीती सेवा नाल सतगुरु त्रुट के परमात्मा नाल मिला देंदा है। सतगुरु जी का फरमान है, भाई रे, साची सतगुरु सेव, सतगुरु तुठै पाई है पूर्ण अलख अपेव।

आमी तुम्हाके भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो।

करण कारण सम्राट सदा सोई सरजी मन ते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते

0: नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पब भक्त हर के जू गण अम्बरीक जय देवत लोचन नामा अवर कबीर परंग तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगतर पर सायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तनंग बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो
1: जेह सत गुर सिमरंत नायन के सिमर मिटाखिन जेह सत गुर सिमरंत।

जे सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निध पावे, सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो। जे सतगुर लग प्रभ।

अहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहां दे सा जे